मेगाहर्ट्स पर ए तुम सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं आ तुम दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। श्रोताओं कर देन अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। तुम सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ था अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने। तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हाँ बोला करते ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ उठी से अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलू?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम
10: तो।

प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।
1: कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले, सगन समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: गोलमाल है।
1: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

1.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।
1: अरे

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सुनेंगे आज का खास न्यूज बुलेटिन रुचिका के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गंजी रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। रेणुकाजी चिड़ियाघर में नए मेहमान के आने से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हिमाचल के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ऑफलाइन सुविधा जारी रखने की मांग उठी है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में आग्रह किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच धर्मशाला में होने वाले मुकाबले से पहले कांगड़ा की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। डीएलएड परीक्षाओं में नकल के मामलों पर सख्ती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और नकल पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग कोर्स बंद किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलाव वर्ष 2027-28 से लागू होने की बात कही गई है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। हिमाचल के प्रवेश द्वार वाले शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। स्वच्छता, पार्किंग, हरियाली और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुकाजी चिड़ियाघर में रविवार का दिन खास रहा। यहां पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनाई दी। महाराजा के गोद से रॉयल बंगाल टाइगर के जोड़े को करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय कर दोपहर करीब 1 बजे रेणुकाजी चिड़ियाघर पहुँचाया गया। वन विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों बाघों को सुरक्षित तरीके से उनके नए बाड़े में पहुंचाया गया। बताया गया कि टाइगर के जोड़े के संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाले समय में रेणुकाजी में वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चिड़ियाघर में आने वाले नए वन्य प्राणियों के नामकरण की भी परंपरा है। विभाग की ओर से लोगों से नाम सुझाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और एकल महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना है। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश की 26 महिलाओं को इस योजना के तहत 78 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरतमंद महिलाओं के साथ सरकार खड़ी है और सामाजिक सुरक्षा के साथ आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर मामला सामने आया है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनरों के लिए ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा जारी रखी जाए। समिति का कहना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त विभाग की ओर से नियमों के तहत व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऑफलाइन सुविधा बंद नहीं करने का आग्रह किया है। पेंशनरों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहने से बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 29 सितंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मल्टी डे मुकाबले प्रस्तावित हैं। मैच को लेकर कांगड़ा आने वाले यात्रियों के लिए हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली से कांगड़ा आने वाले यात्रियों को कुछ उड़ानों में 22,832 रुपए तक का किराया चुकाना पड़ सकता है। 28 सितंबर को दिल्ली से कांगड़ा के लिए न्यूनतम किराया करीब 6,668 रुपए और अधिकतम 22,832 रुपए तक बताया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रोजाना 4 से 6 उड़ानें संचालित होने की जानकारी दी गई है। मैच और पर्यटन सीजन शुरू होने के कारण आने वाले दिनों में हवाई किराए में और तेजी आने की संभावना जताई गई है।
हिमाचल प्रदेश में डीएलएड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अक्टूबर नवंबर 2026 में होने वाली डीएलएड परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अनुसार यदि किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल या नियमों की अनदेखी का मामला सामने आता है तो उस केंद्र को भविष्य में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वंचित किया जा सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने छात्रों से भी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में सिक्योरिटी और प्लम्बिंग के पाठ्यक्रम बंद किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। बताया गया है कि प्रस्तावित बदलाव 2027-28 से लागू होगा, जबकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को लेकर स्कूलों और शिक्षकों की ओर से सामने आ रही चुनौतियों के बीच विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के तहत कई क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें आईटी, पर्यटन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, सुरक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्र शामिल है। सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक और अन्य गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ पर्यावरण विभाग को भी कार्रवाई के लिए अधिक सक्रिय भूमिका दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अलग अलग मात्रा के आधार पर जुर्माने का प्रावधान है। 100 ग्राम तक के प्लास्टिक पर ₹500, 101 से 500 ग्राम तक ₹1500 और 501 ग्राम से 1 किलो तक ₹3000 जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। अधिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर जुर्माना बढ़ता जाता है। सरकार की ओर से प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई तेज करने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार वाले प्रमुख शहरों को क्लीन सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में योजना तैयार की जा रही है। शिमला में आयोजित बैठक में शहरों की स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पर्यटन गतिविधियों और यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रवेश द्वार वाले शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के किनारे कचरा प्रबंधन, पार्किंग, हरियाली और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बाजारों और मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 9 इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी। वन विभाग ने करीब 50 नई इको टूरिज्म साइटों को चिन्हित किया है। इनमें से 9 साइटों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई गई है। इन साइटों से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विभाग का लक्ष्य आने वाले महीनों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करना है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2। धन्यवाद।

0: सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलू?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगाता।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और इस वक्त हम बिल्कुल लाइव हैं अपने इस कार्यक्रम में। लाइव आप हमें सुन भी रहे हैं और लाइव आप हमें देख भी रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप सभी का स्वागत। फेसबुक पेज है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला, और जिन जिन श्रोताओं ने फॉलो नहीं किया है वो भी फॉलो कर लीजिए ताकि हम आपको सुनाई के साथ साथ दिखाई भी दें। कार्यक्रम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और लाइक्स आ गए हैं जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इंदु बाला जी देख रही हैं, और हमारे लाइव पेज से आर के गुप्ता जी भी जुड़ते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग। पिछली बार भी उन्होंने हमसे बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने किए थे, लेकिन होता क्या है ना कि कई बार नेट स्लो होता है तो हम देख नहीं पाते हैं टाइमली, और जब हमारा लाइव हो जाता है ख़त्म उसके बाद वो मैसेजेस कहीं दिखाई देते हैं हमको।

तो चलिए हम 22 सितंबर में पहुंच गए हैं भाई। वो 9 लिखा होता है ना, 22/09, तो 9 जो है ना, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं नवंबर में चला जाता है। तो जी आज है 22 सितंबर 2026, दिन है मंगलवार का, और आप सभी को ये मंगलमयी सुबह जो है वो बहुत बहुत शुभ हो। हमारे उन सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी ना किसी रूप में आज का ये दिवस खास तरीके से मना रहे हैं, चाहे वो जन्मदिन हो सकता है या मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है या कुछ भी और उनके जीवन में हुआ हो जिस वजह से उनका ये जो दिवस है वो खास है। और इसके साथ ही 88.4 मेगाहर्ट्ज घटवाल की आवाज़ हमीरपुर से भी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल की सुबह आप सभी को बहुत अच्छी लग भी रही होंगी और हैं भी। सूर्य देवता पूरी अपनी चमक लिए आजकल उग रहे हैं, कोई बादल का टुकड़ा उनको नहीं छुपा रहा। और ऐसा ही एक गीत भी हम आपको सुनवाने वाले हैं अभी कार्यक्रम में आगे, बस यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ और जानिएगा कि आज हमारी पिटारे में आगे आगे और क्या लेकर के आए हैं हम। चलिए सुनते हैं ये गीत, हैसियत फिल्म का ये गीत है, KJ यशुदास की आवाज़ में।

हैसियत फिल्म का ये गीत कैसा लगा श्रोताओं आपको केजे यशुदास की आवाज में। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। अब चलते हैं हम मौसम की तरफ। तो 22 सितंबर इस वक्त का मौसम क्या कहता है? तो आज तापमान अधिकतम लगभग 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, और अगर अभी की बात करूं तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। मौसम साफ और धूप वाला यानी सनी सनी बना हुआ है। हवा में नमी है करीब 63%। दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 3 से 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गति से हवा चल रही है, और अगर बारिश की संभावना की बात करूं तो दिन में तो बारिश की संभावना बहुत कम है, लगभग 0 से 15%। और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अब अंतिम दिनों में है। प्रदेश में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो सोमवार को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक राज्य में मौसम के पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान जताया है, और इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। विभाग के अनुसार 24 से 27 सितंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 24 सितंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश का अनुमान है, जबकि 25 को सिर्फ मध्यवर्ती इलाकों में ही बारिश के आसार हैं। 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और बारिश की संभावना है। तो श्रोताओं आप जान लीजिए कि ये जो हल्की फुल्की सी ठंड आपको लग रही है ना अभी, ये पूरी तरह से आने ही वाली है और जल्दी ही। वैसे भाई कोई पता होता नहीं है, क्योंकि बर्फबारी जो होती है वो थोड़ी बहुत दिखा करके ना फिर ये अपना लंबा सा स्पैम ले लेता है। हम कई सालों से तो ऐसा ही देख रहे हैं कि जब होनी चाहिए तब होती नहीं है और फिर बाद में जा करके होती है। खैर हालांकि इस अवधि के लिए किसी तरह का अलर्ट या फिर चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के अंतिम सप्ताह में मॉनसून के प्रदेश से विदा होने की संभावना है, और हिमाचल में इस मॉनसून सीजन के दौरान जून से अब तक सामान्य से 10% कम बारिश दर्ज हुई है, और इसके विपरीत 2025 के मॉनसून सीजन में सामान्य से 42% अधिक बारिश दर्ज की गई। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण प्रदेश में 55 सड़कें अभी भी बंद हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि हर आने वाला पल जाने वाला ही होता है श्रोताओं, तो ये पल भी कब चला जाएगा इसका हमें पलक झपकते भी पता नहीं चलेगा। तो बस यही गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर, गोलमाल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़। और हर गीत में ना कोई विचार छुपा होता है, कोई ना कोई शिक्षा होती ही है, बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है आपको।

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी।
1: जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, हर आने वाला पल जाने वाला ही होता है। गुलजार साहब का लिखा किशोर कुमार की आवाज और आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये गाना महज एक फिल्म गीत नहीं बल्कि एक अनमोल सच है। और ये सच ना हम सभी लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो कितने सारे पल हमने बिता दिए, गंवा दिए, या शायद आपने न गंवाए हो, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल किया हो उन पलों में, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आज ये गीत हमने आपको पूरा सुनने दिया, बिल्कुल आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे जब हम बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ कुछ बातें बीच में बताते हैं, तो हमारी सोच तो यही होती है कि गीत तो आप कभी भी सुन लेते हैं, आप इस कार्यक्रम में पूरा नहीं सुन पाएंगे तो किसी और कार्यक्रम में वही गीत आप दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन जो उसका सार होता है ना, जब अगली बार आप वो गीत सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ ज़रूर रहेगी, और अगर आप सुनते हैं कार्यक्रम तो आपको याद आ जाएंगी वो सारी बातें जो कि आज आपने सुनी होंगी।

वैसे गाने की शुरुआत तो बहुत ही कड़वे और खूबसूरत सच से होती है, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, जो पल अभी आने वाला है आते ही वो बीत जाएगा, और हमें याद दिलाता है कि वक्त एक बहती हुई नदी की तरह है, चाहे जितनी कोशिश कर लें हम किसी लम्हे को मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते।

0: तो आज की दुनिया में जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं यानी वर्तमान में जीना कहते हैं, गुलजार साहब ने उसे दशकों पहले ही इस गाने में पिरो दिया था। उनका कहना है कि जब पल को बीत ही जाना है तो क्यों ना इसी पल में अपनी पूरी जिंदगी जी लें। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर हम हर पल हर क्षण इस भाव में रहेंगे कि बस यही पल जो है यही सब कुछ है, तो आप वो जिंदगी उस वक्त जी ही रहे होते हैं। फिर कल को ये पछतावा बिल्कुल नहीं रहता कि उन पलों को हम जी सकते थे लेकिन हमने नहीं जिया। श्रोताओं, बहुत सारी इसी तरह की बातें आज कार्यक्रम में होने वाली हैं। कोई खास विषय तो नहीं है हमारे पास, विषय भी है लेकिन बातें हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। आज का जो मेरा पिटारा है वो धीरे धीरे खुलेगा और आप सोच रहे होंगे कि भैया समाचारों का वक्त निकल गया और इन्होंने समाचार नहीं सुनाए हमें, तो समाचारों का वक्त अब बदल गया है। 9:50 से लेकर के 10 तक आप सुनेंगे समाचार, प्रादेशिक समाचार जो कि आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाते हैं।
1: जाने वाला है, ओ हो, आने वाला पल।
0: चलिए इसी सच को स्वीकार करते हुए कि आने वाला पल जाने वाला है और पिछला पल निकल गया, जो बातें हमने की थी वो तो बस अब तीर कमान से निकल चुका है, छूट चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

गीत भी एक लड़की की तारीफ नहीं बल्कि एक महिला की अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी और उसके आत्मसम्मान का जश्न मनाता है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने बहुत सारी बातें की महिला सम्मान के बारे में। जिस दिन राधा अष्टमी थी उस दिन भी मैं आप सभी से मिलने के लिए आई थी और बहुत सारी बातें हमने इस बारे में की थी, है ना। तुम कमाल हो, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा, ये पंक्तियाँ किसी महिला को ये एहसास करवाती हैं कि उसकी अपनी एक अनूठी यानी यूनिक पहचान है। समाज अक्सर महिलाओं को किसी की बेटी, पत्नी या फिर माँ के रूप में ही देखता है, लेकिन ये गाना एक महिला को उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान के लिए सराहता है, सम्मान करता है। और खूबसूरत बात यह है कि ये गाया भी किसी मेल ने है। अमित त्रिवेदी और नक्शा अजीज की आवाजें।

अपने आप में ही यूनिक हैं, बस आपके जैसा और कोई भी नहीं। कि महिलाएं जैसी हैं वैसी ही खास हैं। महिला सम्मान की शुरुआत इसी बात से होती है कि हर महिला खुद से प्यार करे, अपनी कीमत पहचाने और दुनिया इसके इस वजूद का सम्मान करे।

श्रोताओं अपनी घड़ियां मिलाइए, 9:30 हो चुके हैं और ये लीजिए एक मिनट और भी ऊपर हो चुका है, यानी कि वो पल भी चला गया। चलिए आज का विचार लेते हैं। आपने गीत सुना आयशा का, लेकिन अब विचार है आशा का। तो आशा कितनी भी छोटी हो लेकिन निराशा से हमेशा बेहतर ही होती है। तो आशा का एक दिया अपने दिल में भी जलाए रखिए हमेशा। होप, होप होता है ना, अंग्रेजी में बता देती हूँ, आप कहीं आयशा ही सुन समझ रहे हो। तो ये जो आशा है ना, इसको कभी भी बुझने देना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी हुई है। और जो व्यक्ति उम्मीद हार करके बैठ जाता है, नाकाम दिल को मतलब ऐसा समझता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ हर जगह से, बस मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है, तो उन सब के लिए मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आ सोनिया वे जग जीने दे मेरे

समझ गए ना आप कि ये जो जीवन है इसको जीने के लिए तो आपको ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जीने वालों के लिए ही ये दुनिया है। चले जाने के बाद आपको क्या पता कि जग में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम अक्सर कई बार सोचते हैं ना, जब चीज़ों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हम चले जाएंगे तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, जब चले ही जाएंगे तो फिर आपको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, किसी के आने से जाने से रुकती नहीं है कभी भी।

और अब अगले गीत की बात हम करेंगे। ये जो गीत है इसके बारे में काफी सारी भ्रांतियां जो हैं वो हमारे समाज में फैली हुई हैं। भ्रांति तो नहीं कहूंगी परंतु एक शब्द है जिसको कि गलत वे से लिया जाता है, और वो शब्द आप लोग भी जब गुनगुनाते हैं इस गीत को, इस पे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो आपको भी यही लगता होगा कि शायद ऐसा ही कहा गया। हाल ही में एक फिल्म आई है बुंदेली और अवधी लोक भाषाओं में, या उस तरह के ही रूप में ये फिल्म जो है वो बनाई गई है, हनुमान अंश। और यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस फिल्म की, लेकिन हाँ एक गीत है इसमें पार्वती नाम से, है ना आप सभी का फेवरेट। लेकिन आप क्या सुनते हैं इसमें, ये जो शब्द है ना ये मर नहीं है, काहे को, पहले सुनिए गीत।

0: मर रही।
1: ध्यान से सुना आपने, ये शब्द काय जिद कर रही, काय को मर रही सोचते हैं ना आप, वो ऐसा नहीं है, घूमर रही। घूमर का मतलब होता है घूमर या फिर हुमर। शब्द का अर्थ अंदर ही अंदर घुटने, तड़पने या गहरे विरह की स्थिति से है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी उन्हें शायद अब मेरी बात से वो रिलेट करेंगे कि वाकई में ये शब्द जो है वो मर नहीं था। मैंने भी जब ये फिल्म देखी वहाँ पर हॉल में बैठ कर के, तो मेरे दिमाग में भी ये संशय तो ज़रूर आया एक बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो शब्द है, ये इतनी अच्छी फिल्म बनाई गई लेकिन ये शब्द इस गीत में ऐसे कैसे डाल दिया गया। दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। खैर उसके बाद हम वापस आ गए, देख उसके नशे में रहे काफी दिनों तक कि बहुत अच्छी फिल्म थी। परंतु ये जो शब्द वाली बात थी ना, ये उसी समय उसी कुछ सेकंड्स के लिए मेरे दिमाग में आई थी। उसके बाद आकर के फिर हम अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गए और फिर इस चीज़ को भूल गए। अचानक फिर दोबारा से ये गीत जब मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सर्च तो करना चाहिए। और जब मैं इसकी गहराई में गई तो मुझे पता चला कि ये शब्द वाकई में मर नहीं है, घूमर है। बुंदेली और अवधी लोक भाषाओं में घूमर या फिर हुमर का शब्द का अर्थ अंदर ही अंदर घुटने, तड़पने या फिर गहरे विरह की स्थिति से होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जब गाने में माता पार्वती के संदर्भ में काहे घूमर रही का उपयोग किया जाता है तो ये एक स्त्री के मौन संघर्ष, उसकी आंतरिक शक्ति, अडिग संकल्प और अपने चुनाव के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। अब अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो लिटरल यानी सतही अर्थ के बजाय महिलाओं की उन मानसिक मजबूती और तपस्या को उजागर करता है जो कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अकेले ही सहन करती हैं। और कुछ ऐसी ही स्थिति आपने देखा होगा उस फिल्म में, उस महिला की भी रही जो कि अंदर ही अंदर इस बात से घुट रही थी कि मेरा जो पति है वो मुझे देखता क्यों नहीं। तो जब आप, मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप इसे देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत एक बार फिर से।

है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

लिया दोस्तों आपने कि क्या सही शब्द था, बड़े ध्यान से कान लगा करके सुना होगा तो मेरी बातों से आप जरूर सहमत होंगे। चलिए कुछ आज की तारीख के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज है विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे। ये दिन कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए समर्पित है। ये 12 वर्षीय कैंसर पीड़िता मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद अन्य कैंसर मरीजों के जीवन में खुशियां बिखेरने का काम किया था। इस दिन मरीजों को गुलाब देकर उनके प्रति समर्पण, समर्थन और आशा व्यक्त की जाती है। और इसके साथ ही आज विश्व कार मुक्त दिवस भी है। कार यानी जो गाड़ी आप चलाते हैं अपनी, वो पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लोगों को अपनी निजी कारों को छोड़कर के सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और आज हाथी प्रशंसा दिवस भी है। हाथियों के संरक्षण, उनके बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में उनके महत्व की सराहना करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है आज का। और अमेरिका में व्यावसायिक महिला दिवस आज है। राष्ट्रीय श्वेत चॉकलेट दिवस वो मनाते हैं और राष्ट्रीय आइसक्रीम कोन दिवस भी वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और भारत में क्या क्या आज हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी और साथ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, जरूर बात करेंगे इसके बारे में हम प्रादेशिक समाचारों के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे बस अब से कुछ ही पलों में 9:50 पर, और हम आपसे मिलेंगे अब पूरे 10 बजे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए शिमला पुलिस को सराहा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, बदले की भावना से कार्य कर रही सुक्खू सरकार। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने MIS के तहत सेब का खरीद मूल्य बढ़ाने की राज्य सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सिनेमा में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सिनेमा जगत के शीर्ष सम्मानों में गिने जाते हैं और फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाएं भाग लेंगी। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को भी वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और ड्रग तस्करों व उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने व मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित लगभग 4,13,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त करने के प्रयासों के लिए शिमला पुलिस की सराहना की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 15 NDPS मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित 12.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस से ड्रग माफिया और अवैध ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव को कमजोर करने के लिए इसी तरह की केंद्रित कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम राज्य सचिवालय में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे डेंटल कॉलेज शिमला की फैकल्टी और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुमक्खी पालकों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत राशि प्रदान की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि कांगड़ा, बंडी, नागण, फट और कल्याणा क्षेत्र में बिट्टल के कारण मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को शहद का विपणन बिग बास्केट के माध्यम से करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रावधान किया गया है। नई नीति में पारंपरिक रटने की बजाय समझ, रचनात्मकता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। मंडी जिले के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थियों को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि स्नातक स्तर से ही उन्हें शोध और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक लचीला, शोधपरक और विद्यार्थियों के भविष्य की जरूरतों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी 3 वर्ष में स्नातक डिग्री पूरी कर सकते हैं जबकि 4वें वर्ष में ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प मिलेगा। नई व्यवस्था में अब 1 वर्ष के बाद UGC प्रमाण पत्र और 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद UGC डिप्लोमा लेकर पढ़ाई छोड़ने और बाद में आगे बढ़ने की सुविधा भी है। सबसे बड़ा विकल्प चौथे वर्ष में दिखाई देगा। ऑनर्स विद रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को आठवें सेमेस्टर में शोध परियोजना या डिसर्टेशन पूरा करना होगा। उन्हें पीएचडी धारक शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।

0: बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में देरी करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश में सेब की एमआईएस खरीद दर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। ठियोग से कांग्रेस विधायक और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से एमआईएस के तहत सेब की खरीद दर 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलो करने की मांग की है। राठौर ने कहा कि बढ़ती मजदूरी, खाद, उर्वरक, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड की कीमतों के साथ मौसम की मार ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में एमआईएस के तहत सेब की खरीद बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 12 रुपए प्रति किलो की एमआईएस दर बागवानों के लिए पर्याप्त नहीं है। कुलदीप राठौर ने एमआईएस के तहत लंबित भुगतान जल्द जारी होने की उम्मीद भी जताई।
1: योजना के अंतर्गत जो सेब लिया गया था उसका काफी भुगतान भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ भुगतान होना बाकी है। कई बागवान जिन्होंने ऋण ले रखे हैं, ऋण अदायगी में समस्या आ रही है, तो इस स्थिति में नहीं है कि ब्याज की राशि लौटा सके। तो हमें उम्मीद है कि सरकार उस पैसे को भी रिलीज करेगी और जो हमारी ये मांग है एमआईएस को बढ़ाने को लेकर उस पर भी सरकार विचार करे।
0: लाहौल स्पीति में वन अधिकार अधिनियम 2006 और नौ तोड़ भूमि के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक और भाजपा नेता रवि ठाकुर ने प्रदेश सरकार से इन विषयों पर अपनी स्पष्ट नीति जनता के सामने रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है और इस कानून के तहत हर व्यक्ति को स्वतः भूमि आवंटित नहीं होती बल्कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। रवि ठाकुर ने सरकार से नौतोड़ पर पारदर्शी नीति बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को राज्यपाल और केंद्र सरकार के समक्ष भी प्रमुखता से उठाएंगे। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, एकल महिलाओं और विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक हर माह मिलेंगे 1000 रुपए। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक मिलेगी सुख शिक्षा की छांव। वीसी नियुक्ति को लेकर सरकार व लोक भवन के बीच टकराव शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, सुक्खू सरकार के नए कानून को दरकिनार कर राज्यपाल ने शुरू कर दी उप कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया। दैनिक भास्कर के अनुसार, पेपर खुलने से लेकर कॉपियां जमा होने तक होगी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया एग्जाम मित्र ऐप। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगे प्रदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार। ड्रग तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए शिमला पुलिस को सराहा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, कांगड़ा जिले में बिट्टल के हमले से मधुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30% राहत देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, बदले की भावना से कार्य कर रही सुक्खू सरकार। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एमआईएस के तहत सेब का खरीद मूल्य बढ़ाने की राज्य सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

तो आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में 91.2 एफएम रेडियो कुंजन धर्मशाला से और 88.4 मेगाहर्ट्ज़ हमीरपुर की आवाज़ डटवाल की आवाज़ हमीरपुर से। श्रोताओं समाचार भी आपने सुन लिए हैं और सारी जानकारियां आपने पाली होंगी। इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि जितने ध्यान से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं ना मतलब इसी कार्यक्रम का हिस्सा भी ये समाचार होते हैं और उतनी ही शिद्दत से आप समाचार भी सुनते होंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो कि मैंने भी अपने पास रखी थी जो आपको देनी थी लेकिन आपने समाचारों में सुन ली हैं। और जब हम जिंदगी की बात कर ही रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं और जिंदगी की बात तो हमेशा होती ही रहती है ना। अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि एक और जगह एक और छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। क्या हुआ था, क्या वजह थी, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। परंतु ऐसी जो घटनाएं होती हैं ना, जब ये हो जाती हैं तब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। माता पिता को ये समझने की ज़रूरत है हमेशा ही कि अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएं। जब भी कभी बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमेशा उन्हें ये कह करके भेजें कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी से कितनी बड़ी बात भी हो जाए, हम लोग यहाँ पर हैं तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारी हर बात सुनने के लिए। चाहे तुम गलत भी होगे तो भी आपने घर में आकर के हमसे सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ बताना है। बच्चे ये कदम जब उठाते हैं ना तो या तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं और या फिर इस डर से कि अब ऐसा हो गया है तो समाज क्या कहेगा। बस यही दो एक कारण होते हैं जो कि बच्चे इस तरफ चले जाते हैं। या फिर उन्हें शायद ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर इतना सब कुछ कर दिया, इतना लुटा दिया और हम पता नहीं उस चीज़ तक मतलब उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा कैसे उतरेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे सोचते हैं। बच्चे समझदार भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल नशे पत्ते में ही पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन हर बार उन्हें ये समझना चाहिए कि जीवन से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। जीवन होगा तो जो आज चीज़ें खराब हुई हैं वो कल ठीक भी हो जाएंगी, परंतु जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर जो बाकी पीछे रह जाते हैं उनके लिए पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। चलिए एक गीत सुन लेते हैं हम, दिल का हीरा फिल्म का ये गीत है और सुनेगा इस गीत में भी कितने सारे संदेश दिए गए हैं।

होता हूँ पिछले 4 कार्यक्रमों से ये गीत सुनवाने के लिए मैं हर बार अपनी प्लेलिस्ट में रखती हूँ, हर बार ही इसके बारे नहीं आती। आज फाइनली आपको सुनवा रही हूँ।

चुनाव तो आपने सुना कि जिंदगी का किस तरह से जुबां पर नाम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। हम लोग ना कई बार इस अमीरी और रईसी के चक्कर में फंस के रह जाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हमें जिंदगी को एक्चुअली जीना कैसे है। पर ये दो शब्द मैंने कहे अमीरी और रईसी, पता है इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कहेंगे नहीं भाई, दोनों एक ही तो होते हैं। अमीरी होती है जेब से तय और रईसी दिल और संस्कारों से। दोस्तों, अमीर वो है जिसके पास दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन रईस वो है जिसके पास बैठने पर कभी किसी, वैसे तो कोई इंसान छोटा नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अपने आप को इस कदर दीनहीन बना ले तो हम उसे वैसा ही कहते हैं। तो किसी ऐसे इंसान को भी अपनी उस अवस्था का एहसास बिल्कुल भी ना हो। और अमीर होना किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन रईस होना आपके चरित्र और संस्कारों की बात होती है। और श्रोताओं, अब आप ये भी सोचेंगे कि देखिए वक्त निकलता जा रहा है, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था, हर आने वाला पल जाने वाला है, और जो भी बातें हम कर रहे हैं आज आपके मन में कुछ भी है, किसी एक विषय पर हम रिस्ट्रिक्ट आज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो जो भी आपके मन में है वो आप हमसे फ़ोन कॉल करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। नंबर आपको पता है ना, 7018117091। और ये भी हो सकता है कि आप पिछले किसी बात पर बात करें, और आगे तो हमने बढ़ते ही चले जाना है, आगे और भी नई नई बातें निकलेंगी। यहाँ पर मैं आपके लिए एक मैसेज भी पढ़ना चाहती हूँ, और ये अमीरी रईसी के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये मैसेज हमें भेजा है राजेंद्र गुप्ता, जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश से। नमस्ते मैम, अक्सर ये हमें लाइव पर भी हमें मैसेज कमेंट्स करते रहते हैं। नमस्ते मैम, हम भी रेडियो गुंजन धर्मशाला से जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा जो भी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं बहुत ही सराहनीय हैं, और साथ ही में सभी आरजेस को हाथ जोड़ करके मैं राम राम कहता हूँ, और जिस भी टॉपिक पर आप बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर होते हैं। देश से विदेश की और बड़े से बच्चों की जानकारी आप देते हैं, और इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी लोकल भाषा में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो समझ में तो नहीं आते, लेकिन सुन करके मन को काफ़ी आनंद आता है। मुझे लगता है ये सचिन और शशि के लिए लिखा गया है, क्योंकि लोकल भाषा में कार्यक्रम यही लोग करते हैं दोनों। और इस वक्त शशि मंद मंद मुस्कुरा रही है मेरे साथ बैठी हुई, क्योंकि टेक्निकल सहयोग ये मुझे दे रही है। जी राजेंद्र गुप्ता जी, आपका ये प्यार भरा राम राम हम तक पहुंच चुका है, और आप सभी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, हमारी भी आपको प्यार भरी राम राम दोनों हाथ जोड़ करके। मुझे लगता है जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश आपके घर तक पहुंच गई होगी।

श्रोताओं, आप जितनी शिद्दत से हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं, कुछ नहीं देते हैं हमको, बस अपना समय जो देते हैं ना, वो ही बहुत कीमती होता है हमारे लिए। तो ये जी, जो अमीरी और रईसी की बात मैं कर रही थी ना, आपने ये जो गीत सुना अभी पीछे, जिंदगी का यूं जुबा पर नाम आना चाहिए। तो जिंदगी केवल इंसानों के लिए नहीं होती है, हमारे आसपास में और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और उनके बिना जो बायोडाइवर्सिटी है वो नहीं चल सकती है श्रोताओं। क्योंकि अगर ये आसपास नहीं होंगे ना, तो हम मतलब हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अजीब सा नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि जब आप मेट्रोपॉलिटन्स में जाते हैं, वहाँ पर कंक्रीट की दीवारें देखते हैं चारों ओर खड़ी हुई, और वहाँ पर हार्डली आपको एक कुत्ता भी कहीं बाहर दिखता होगा, क्योंकि अब तो वैसे भी रूल्स बन गए हैं कि इनको यहाँ नहीं खिलाना है, वहाँ नहीं खिलाना है, तो कहाँ जाएंगे वो? आखिरकार तो गायब ही कर दिए जाएंगे ना। तो ऐसी ही एक रील मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, एक कुत्ता डर के मारे बारिश से बचने के लिए किसी गुफा में, मतलब नीचे ज़मीन में एक खड्डा था, उस खड्डे में जाकर के छुप गया, और साथ में वो माँ थी एक्चुअली, और उसके साथ में उसके दो तीन बच्चे भी थे, और वो उन बच्चों को बारिश से बचाने के लिए उसमें लेकर के चली गई। और कुछ लोगों ने, कुछ गाँव के लोगों ने वो देखा, और जो संस्था थी उसे कॉल किया, और वहाँ से लोग आए, उनको बड़ी मुश्किल से, बड़े ध्यान पूर्वक वहाँ से निकाला गया। और जो वो माँ थी, उसकी हालत ऐसी थी कि वो कीचड़ से बिल्कुल सनी हुई थी, लेकिन अपने बच्चों को उसने आँच नहीं आने दी, बच्चे आराम से सुरक्षित निकाले गए वहाँ से, और माँ के जो शरीर है, शरीर पर कीचड़ बिल्कुल सूख चुका था। और ये जो लोग इनसे नफरत करते हैं ना, कहते हैं कि हमारे आसपास में ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी ना सोचें। और ये जो जीव जंतु हमारे घर से निकल रहे हैं, आजकल बरसातों में खूब निकले, और आप लोग कहते हैं कि भैया ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पहले ये धरती सारी इन्हीं की थी, इंसान ने बाद में अवतरण लिया है, और इन्हीं के घर में हम लोगों ने घुसपैठ करके अपने अपने घर बनाए हैं। इनके लिए हमने जगह छोड़ी कहाँ है, जंगल छोड़े कहाँ हैं, और फिर हम लोग एजेंडा लेकर के निकलते हैं और ये कहते हैं कि अब ये जो चीते हैं इन्हें बचाया जाए, या फिर कुछ और ख़ास स्पीशीज़ हैं उन्हें बचाया जाए। कितनी दोहरी मानसिकता है ना हमारी। चलिए गीत सुनते हैं हम एक।

और इस गीत में भी आपको समझ में आएगा अमीरी और रईसी का फर्क। ये जो गीत है ना, ये दोनों ही तरह की बातें करता है कि पैसा चाहिए भी और प्यार भी चाहिए।

श्रोताओं, अभी मुझे शशि ने भी याद दिलाया कि बहुत समय से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मतलब एक रील वायरल हो रही थी। अब वो न जाने किस मकसद से बनाया गया था वीडियो और किसने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। एक जो कुत्ता था उसको नदी में फेंका जा रहा था। और आप सभी जानते हैं कि ये मतलब उस पर इतने सारे कमेंट्स आए, इतना कुछ लोगों ने बोला, लेकिन क्या जो भी हम लोग वहाँ पर कमेंट्स करते हैं और ये सब करते हैं उस चीज़ को मीन करते हैं? मतलब बाद में तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई और अब ये भी पता चला, एक अच्छी खबर ये भी निकल करके आई, देखो जानवर कितना वफादार है, ये भी आप देखिए समझिए इसी कहानी से कि वो किसी ना किसी तरह से बच करके जिंदा था वो कुत्ता और वापस उसी घर में पहुंच गया जिस घर के लोगों ने उन्हें वहां पर उसको वहां पर फेंका था। तो कितनी मार्मिक सी बात है ना कि हम इंसानों में वो दया भाव, वो मतलब एक दिन भी कोई आपके घर में आकर के रह लेता है उससे भी प्यार हो जाता है। और फिर उन्होंने तो कितने साल उसको पाला और इतने सालों में वो जानवर तो उनका बन गया, लेकिन वो उसे नहीं अपना पाए। वो नहीं, उनका कहना तर्क ये दिया जा रहा था कि उसको शायद फाउल स्मेल आने लग पड़ी थी, उससे बदबू आती थी और उसको कुछ घाव हो गए थे, उस वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था, लोगों को काटने लग पड़ा था। तो क्या उस देश में वहाँ पर कोई ऐसी संस्था आसपास में नहीं थी जिसे कॉल करके वो बुलाते और उसको हैंड ओवर कर देते? खैर, ये बड़ी ही मार्मिक सी बात है, बड़ी दिल दहला देने वाली एक घटना थी जो हमने देखी। इस तरह के वीडियोस मुझे लगता है कि आने नहीं चाहिए, परंतु अगर नहीं आएंगे तो हमें सच में समझ नहीं आएगा कि हम इंसान किधर जा रहे हैं, किस तरफ हमारी दिशा कहाँ हो गई है।

सिटी इलाके की रहने वाली बुजुर्ग महिला लताबाई की। उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी और सोने के गहने बेच करके एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन ताकि बुढ़ापे में सिर छुपाने की जगह उनके पास रहे। लेकिन उनके बेटों ने धोखे से वो फ्लैट अपने नाम करवा लिया, उनके और अपनी ही सगी माँ को घर से बाहर निकाल दिया।

0: जानी।
1: तो दोस्तों आजकल देख ही रहे हैं आप, ये सब कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है, राजा और प्रजा में सब अपना अपना देख रहे हैं और तनातनी बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रही है।

0: लीजिए घड़ियां मिलाइए श्रोताओं, 10:30 हो चुके हैं।
1: हे रामचंद्र कह गए सिया से,
0: तो हम उस माँ की बात कर रहे थे जिस सगी माँ को चार बेटों ने घर से निकाल दिया। सड़कों पर भटकने के बाद कुछ समाज सेवी सेवियों की मदद से लताबाई पिछले 8 महीनों से एक वृद्धाश्रम यानी जानकी वृद्धाश्रम में रह रही थी और हाल ही में उनका निधन हो गया। चारों बेटों ने शव लेने और अंतिम संस्कार करने यानी मुखाग्नि देने से भी साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ सकते हैं, आप संस्कार कर दो और जो भी खर्चा होगा वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लो। और इसी वजह से उनका शव 3 दिनों तक अस्पताल के शवगृह यानी मॉर्चरी में रखा गया था। तो देखिए हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। आखिरकार वृद्धाश्रम और प्रूफ फाउंडेशन के समाज सेवियों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया।

0: श्रोताओ, एक फ़ोन कॉल आ रहा है, ले लेते हैं, फिर फ़ोन कट जाता होता है। हेलो, हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: सुबह का प्रणाम है आपको।
0: जी आपको भी प्रणाम। प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही अनिल जी। शायद आपकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। हेलो अनिल जी,

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी। प्रणाम।
0: प्रणाम जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग आपको।
1: गुड मॉर्निंग। सुपर बात।
0: मेरी आवाज आ रही है?
1: इको कर रही है।
0: अभी
1: इको कर रही है जी।
0: अभी भी इको कर रही है जी। अब मैंने कम कर दिया, बताएं।
1: जी,
0: अभी ठीक है?
1: हाँ, सब सही है। बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही है जी। जी बताएं अपना नाम और अपना काम। अच्छा जी, हालेलुया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
0: जी। अनिल जी, आज क्या बात करना चाहते हैं, क्या है मन में?
1: तो यही शुरू करूंगा। थोड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तुम सोने से पहले सबको माफ कर दो। तुम सोने से पहले सब सब सबको माफ कर दो। तुम्हें उठने से पहले भगवान सबको, भगवान आपको माफ कर देगा।
0: हाँ, क्योंकि उठने से पहले तो वही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो सपनों में होते हैं।
1: नहीं, पहले पहले तुम तो पिछले दिन सबको माफ कर दो।
0: हाँ जी,
1: तुम्हें तो माफ करेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम माफ करेंगे ना सबको।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो ये आप, ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हैं वो भी बताएं।
1: मैं जो आपका ये संदर्भ था, सुन रहा था आपको
0: जी,
1: कि जैसे आजकल का लोगों का कर्म हो गया, उसके अनुसार कुछ बातें कर रहा था कि जैसे लोग इतने मतलब भावना से मुक्त हो चुके हैं, उनके दिल में कोई भावना नहीं रही है, कुछ सेंटीमेंट खड़े हो चुके हैं, उससे कुछ सोच रहा था। पर फिर भी ना, लोगों को उन भावना को अपने दिल में रखना चाहिए, जरूरी है। तो भी हम नहीं तो हम इतना कर सकते हैं कि मतलब हमारी जो सोच का दिवालियापन निकल चुका है काफी हद तक।
0: हाँ, बिल्कुल। आप भी देख रहे होंगे ऐसी घटनाएं, है ना, जगह जगह से हमें सुनने को मिल रही हैं। कई कोई माँ को लेने बेटियां भी नहीं आती, कहीं बेटे नहीं, मतलब कितना
1: देखिए
0: ऐसा हो गया हमारा समाज।
1: इसके संदर्भ में एक छोटी बात बोलूंगा। आज हम विकास कर रहे हैं, पर हम विकास तो कर गए ना, पर हमारी जो सोच का ना, सोच हमारी विकसित नहीं हुई है, क्योंकि हमारे देखिए हमारे सनातन में या हमारे पुराने जब हम अनपढ़ थे ना, तो अच्छे थे, तो हमारे माँ बाप जो हमारे माँ बाप थे, वो हमारे बुजुर्ग जितने थे ना, वो हमारे घरों में रहते थे। आज हम बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, बड़े सुसंस्कृतिक कल्चर हो गए हैं, तो हमारे माँ बाप वृद्ध आश्रमों में रहते हैं, तो कितना ये अनर्थ नहीं है।
0: अनिल जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती तो हमारी भी है ना, कि हमने अपने बच्चों को उस तरह के नहीं दी।
1: इसमें ये ना कि अगर हम अपने माँ बाप को मतलब घर में नहीं रखेंगे ना, तो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है ना, वो हमें भी नहीं रखेंगे, ये तो रिवर्स होना ही है।
0: अनिल जी, इसमें एक बात हम ये भी देखेंगे, हम देखिए, हम एक तरफ एक पलड़ा भारी लेकर के नहीं चल सकते। हम बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, मेरे ख्याल से। तो हमें भी तो समय देना होगा ना। अब आज मैं यहाँ पर आकर स्टूडियो में बैठी हूँ, तो क्या मैं क्वालिटी टाइम देती हूँ अपने बच्चों को? खैर, मेरे बच्चे तो अब बाहर हैं, आज ही आई है बेटी, तो वो तो अपना समय जो उनका था वो लेकर के हमसे चले गए, अब तो काम कर रहे हैं अपना अपना। लेकिन जिन श्रोताओं के बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें ये वाकई में समझना होगा कि क्या आप अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को देते हैं। अगर देते हैं और उनके साथ अच्छा बॉन्ड है आपका, तो वो भी उस समय पे
1: देखिए
0: आपको नहीं छोड़ेंगे।
1: देखिए, आप तो घर में कार तो मार्केट से खरीद सकते हैं, आप कार जो है ना वो मार्केट से ले सकते हैं, बिल बिल कार ले सकते हैं, पर संस्कार तो आपको घर से देने पड़ते हैं ना।
0: वही वही कह रहे हैं हम, इसकी बेसिक जो मूल है ना, जो जड़ है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो बच्चे हैं,
1: हमने अपने अपना जो अपना जो अपना धरातल है वो छोड़ दिया है। हमने अपने अपने जो मतलब जो ग्रास रूट है ना, वो हम छोड़ चुके हैं। इस सारा नतीजा ग्रास रूट का ही है।
0: और पैसे के पीछे हम दीवाने होते चल जा रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है इस दुनिया से।
1: ये तो एक मैटेरियलिस्ट लोग भाग मैटेरियल के पीछे जितना भागोगे ना, जितना भौतिकवाद होते जाएगा तो हमारी जो सोच का कुवाड़ा निकलता जाएगा।
0: हम कहते हैं
1: क्योंकि
0: ना कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं रोटी कपड़ा और मकान, अब हम उसमें भी खुश नहीं है, हमें और भी बहुत कुछ
1: बेसिक
0: चाहिए।
1: रोटी कपड़ा मकान तो पहले का लोग भूखे रहते थे, पहले तो खाते थे, पर अब लोग कटथ्रोट कंपटीशन या रैट रेस में ज्यादा भाग भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके कारण हमारी जो सोच है ना बहुत ही दिवालीपन के। देखिए कार्ल मार्क्स ने एक चीज बोली थी, कार्ल मार्क्स ने एक चीज बोली थी, हमारे जो जितना भी समाज है ना इसके बीच एक चीज आ गई है पैसा, और हम अगर अगर अपने बीच से कोई पैसा तिलाम की चीज निकाल देना तो दुनिया के आधे से ज्यादा ज्यादा जो डिस्प्यूट है ना
0: जी
1: वो हट सकते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। दूसरा,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी बोलिए दूसरा।
1: दूसरा आपने जो संगीत आज सुनाए थे वो जो पहला संगीत दिया था इंदिवर जी का और यशुदास जी का, वो बहुत बढ़िया था
0: धीरे धीरे सुपर
1: उस।
0: हुई
1: हाँ, और उसके बाद एक आर डी बर्मन जी का जो मिश्रण आया था उस किशोर कुमार जी के साथ, वो भी अच्छा था। उसके बाद एक और पंजाबी दिया था अपने हरभजन मान का, वो भी अच्छा एक
0: प्यारी मेल।
1: उसमें एक बढ़िया मैसेज था लेटेस्ट उसमें, बहुत ही ठीक है आज के समय के अनुसार। बट ये है कि हम जब तो का विकास तो कर रहे हैं पर सोच का विकास नहीं है कहीं भी, नजर नहीं आता मुझे। देखिए बच्चों बच्चों को देख लीजिए, जितनी जनरेशन है वो कैसी कैसी बातें करती है।
0: हम ही ने दिया है उन लोगों को, उनको उनको नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद ही रख लिया है ना, ये भी हमारी ही देन है। खैर अनिल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी गीत और भी हैं, सुनिएगा ध्यान से।
1: जी,
0: जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के और भी गीत जो कि हम चुन करके लाए हैं आप सभी के लिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की, पैसा, फ्लैट और जायदाद तो उन बेटों को मिल गई, लेकिन क्या वो चैन की नींद से सो पाएंगे? आज के दौर में लोग अमीर तो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, लेकिन रईस यानी दिल का बड़प्पन और संस्कार खोते जा रहे हैं। तो याद रखिए कि
1: शादीशुदा हो के बेशरम,
0: तो आप ये याद रखिए कि मकान ईंट पत्थरों से बनता है, पर उसे घर सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से ही बनाया जा सकता है। और अब समय कम है हमारे पास, थोड़े थोड़े गीत आपको सुनवाएंगे।

रहा हूँ, अब हम आपको बता देते हैं। वैसे सुन लिया ना अपने माँ का गीत, कितना प्यारा। माँ की कोई ज़ात नहीं, माँ तो माँ ही है। माँ सब कुछ कर देती है बच्चों के लिए, लेकिन चार चार बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं संभाल पाते, बहुत शर्म की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब आपको बताते हैं कि आज 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह है, और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में 22 से 26 सितंबर तक 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का भव्य आयोजन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे, और इस साल की थीम है जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन।

आज की महत्वपूर्ण घटनाओं में संयुक्त राष्ट्र की पहल और मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा दूसरा कश्मीर युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था और युद्ध विराम सीज फायर लागू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन युद्धपोत इमदेन ने मद्रास बंदरगाह पर बमबारी की थी, जिसने भारतीयों को पहली बार विश्व युद्ध की कड़वी सच्चाई का एहसास करवाया था। 1599 में लंदन के फाउंडर हॉल में 21 व्यापारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नई कंपनी बनाने पर चर्चा की गई और इसको बाद में भारत का नक्शा बदलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का पहला कदम माना जाता है। श्रोताओं, सिख संप्रदाय के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी का करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां निधन हुआ था। उन्होंने ही सिख धर्म में प्रसिद्ध लंगर प्रथा की शुरुआत की थी।

लीजिए, ईश्वर का नाम भी हमने ले लिया है। और जैसा कि अनिल जी ने कहा था कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, तो जब आप सुबह उठोगे तो ईश्वर हर एक बात के लिए आपको माफ़ कर देगा आपके उठने से पहले। अब जो जो इस पर यकीन करता है वो करेगा, और जो नहीं करता है, क्योंकि कई लोग नास्तिक भी होते हैं, तो हम इस डिबेट में तो नहीं जाएंगे, समय भी हमारे पास बहुत कम रह गया है। दोस्तों, बातें तो और भी बहुत सारी आपसे करनी थी मुझे। हाँ, मेरे पिछले कार्यक्रम में एक बात रह गई थी जो कि मैंने आपसे कहा था कि समाचारों के बाद करूँगी, और इत्तेफाक से उस दिन 9:20 पर समाचार नहीं आए, और वो पहला दिन था, मुझे नहीं पता था कि वो 9:50 पर अब आया करेंगे, और दिमाग से वो बात निकल गई थी। उस दिन हम बात कर रहे थे कुछ कुछ महिलाओं के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ एक वाकया हुआ आते आते स्टूडियो में, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरे दिमाग में वो अभी याद आ गया मुझे और रह गया था, तो आपसे वो शेयर करना भी बनता है, तो मैं करती हूँ कि देखिए, जब स्टूडियो की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं रास्ते में, बहुत सारी गाड़ियाँ आगे चली होती हैं जिनको कि पास लेकर के हमें आगे निकलना होता है, क्योंकि वो अपनी रफ्तार से चलती हैं और हमें अपनी रफ्तार से चलना होता है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत तेज़ चलती हूँ, परंतु अपनी समय सीमा से हमें भी पहुँचना होता है ना स्टूडियो, तो लाइव फिर आपसे बात कौन करेगा वरना। तो ऐसे ही मैंने एक गाड़ी से पास लिया, और वहाँ न आगे कोई था न उसके पीछे कोई था, उन्होंने इतनी ज़ोर से मुझे हॉर्न दिया कि पीछे मुड़ करके मैं मजबूर हो गई ये सोचने के लिए कि इन्होंने मुझे हॉर्न किस लिए दिया है। ना तो मेरा साइड स्टैंड लगा हुआ था, होता है ना कई बार साइड स्टैंड लगा हो तो लोग बताने के लिए करते हैं कि आपका शायद आपकी टायर में हवा कम है या पंचर है या आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे हॉर्न इसलिए दिया कि मैं उनसे आगे कैसे निकल गई। तो ये बड़ी हमारे समाज की विडंबना ये भी है कि लड़कियों को, लेडीज़ को ना कुछ समझा नहीं जाता, उन्हें लगता है कि भैया हम गाड़ी में हैं, और हो सकता है कि वो सभी को ऐसा करते हों, मैं तो एक महिला हूँ इसलिए शायद मैं उस तरह से सोच रही हूँ या मेरा सोचने का तरीका ये है, तो मुझे तो ऐसा ही लगा। तो क्या पता वो सभी के साथ ऐसा ही करते हों, तो भैया जो सड़क है ना वो किसी एक कि नहीं है, वो सभी के लिए बनाई गई है। हाँ, हालांकि माना अभी सड़क में कुछ खड्डे हैं, उन्हें भर दिया जाएगा समय से हो भी रहा है ये काम, अब बरसातें ख़त्म हो गई हैं, परंतु इस तरह की चीज़ें आप ना करा करें। क्या एक ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भैया हमसे कोई पास कैसे ले गया, और इतनी छोटी छोटी सी बातों पर ना बहुत बड़े बड़े से दंगे भी हो जाते हैं, ये भी हमने देखा है। खैर, कार्यक्रम में अगला गीत भी आपको सुनवाना है और बातचीत भी आपसे करनी है, तो अब बात करेंगे हम बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में। जब तक बेटी घर में रहती है पूरे आंगन की रौनक होती है, उसकी हंसी से घर चहकता है, उसकी छोटी छोटी जिद से पूरा परिवार मुस्कुराता है, वो पापा की परी होती है और माँ की परछाई। लेकिन शादी के बाद जैसे ही उसकी डोली उठती है तो अपने ही उस घर में वो एक मेहमान बन जाती है। सुना है आपने ये गीत, अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है।

बेबाबुला। शादी के बाद जब वो कुछ दिनों के लिए मायके आती है ना, तो बिल्कुल उस चिड़िया की तरह आती है जो थोड़ी देर के लिए नए आसमान, थोड़ी देर के लिए आंगन में आके बैठती है, दाना चुगती है और फिर अपने नए आसमान की तरफ फुर से उड़ जाती है। वो आती तो पूरे हक से है, पर लौटते वक्त एक पराई अमानत की तरह हो जाती है। विदाई के वक्त जो दर्द एक बाप के दिल में होता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तभी तो हमारे बुज़ुर्गों ने पंजाब के इस बेहद खूबसूरत और रूहानी लोकगीत में लिखा है, जिसे सुनते ही हर आंख नम हो जाती है। खैर, कार्यक्रम के आखिर में आपको रुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ये गीत ही इस वक्त हमारी नज़र में आया तो हम भी क्या करें। बेटियां तो बस कुछ दिनों की मेहमान हैं, चिड़ियां चकनाइयां वेड़े तेरे ओ बाबुला। और इसी तरह से हम भी यहाँ पर इस आंगन में, रेडियो गुंजन के आंगन में थोड़ी देर के लिए चहकने महकने के लिए आते हैं, आप लोगों से कुछ बतियाते हैं और फिर चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य की ओर।

श्रोता इसी गीत के साथ ज्योति पठानिया को भी दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे संदीप।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे

0: बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
1: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी हिसाब से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है।

0: धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे पर...
1: कुछ मीठा बोलो।
2: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
1: मैं खाने की बात कर रही थी।
2: एक खाओ कर गुलाब जामुन मंगा दो।
1: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: देखता रहूं
2: जोकर

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
5: उठाओ उठाओ जी, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलो।
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
11: एक खाओ कर गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रूमा गुलेरिया जी। तो रूमा जी, ये हमारा कार्यक्रम होता है मेरे हौसलों की उड़ान और इस कार्यक्रम को आप बहुत अच्छे से मैनेज करती चली आ रही हैं कब से, अब मैं देख रही हूँ आपको रुचिका के साथ। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया है फिर से दोस्तों के सामने। और देखो, बड़ा अच्छा लगता है हमारे हौसलों को जब उड़ान मिलती है। और हमारा मेन मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि हम बहुत अधिक से अधिक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा
0: पाए
1: ताकि किसी भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है, कानूनी पेचीदगी आती है, तो उसके साथ वो किस तरह से निपट सकते हैं।
0: वैसे सिर्फ कानूनी बातें ही नहीं करती हैं आप इस कार्यक्रम में, मैंने और भी बहुत सारे विषय सुने हैं, कभी माँ की भूमिका में भी रहती हैं और बहुत सारी चीजें। चलिए, हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं तो इस पे आगे बढ़ते हैं।
1: जी, आपने बात करी कि आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के बारे में। तो सबसे पहले तो ज्योति जी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचना, क्योंकि आजकल के समय की अगर हम बात करें तो हमारा जो यंग जनरेशन है या बहुत सारी ऐसी कई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर, जब हमने कभी देखा होगा घर में भी अगर हम या हमारे बच्चे कभी गुस्सा आता है तो हम तोड़फोड़ करते हैं, चीजें इधर उधर पटकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसा हर आम जिंदगी में भी होता है ये, लेकिन जब बात आती है पब्लिक प्रॉपर्टी की तो वहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता हो जाती है।
0: तो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो ये है, इसका पूरा नाम क्या है और ये लागू कब हुआ था, सबसे पहले हम यही बात करते हैं।
1: बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में ये अधिनियम जो था वो उपयोग में आया था, लागू हुआ था।

0: और ये हुआ था सारे ही भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था उस दौरान, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां के हालात आप जानती हैं कुछ और थे। लेकिन आज के जो हालात हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट वैसे ही प्रभावी तरीके से लागू है जैसे बाकी भारतवर्ष में है। और इसका पूरा नाम आपने पहले ही बता दिया था, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट
1: जी।
0: और मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहूंगी ज्योति जी की, पब्लिक प्रॉपर्टी में वो सारी संपत्तियां आ जाती हैं जिनका हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है बिना रोक टोक के, जैसे सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, और भी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय बनाए हैं, स्कूल बने हैं, अस्पताल हैं, ये इस तरह की जो भी संपत्तियां हैं जिनको आम पब्लिक इस्तेमाल करती है बिना किसी बेरोक टोक के, वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी आती है। तो इन संपत्तियों को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान देश का या किसी और का नहीं होता है, आम आदमी का भी इसमें नुकसान होता है।
1: तो दोस्तों जैसे कि रूमा जी ने हमें बता दिया है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जैसे कि सरकारी इमारतें, बसें, ट्रेनें, पानी बिजली के साधन या कारखाने जो कि सरकार, स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम या किसी भी सरकारी संपत्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, आंका जाता है। और उसका बचाव करना, उसकी संभाल करना
0: बिल्कुल हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, और ये रिस्पांसिबिलिटी हमें दिल से निभानी चाहिए। आपने देखा होगा सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, कई बार विरोध प्रदर्शन के दौरान या दंगे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला होता है तो ज्यादा क्या होता है, हम लोग उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं,
1: क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ नहीं होता है ना, हम अपने घर की चीजें तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जाकर के वहां जाएंगे। और एक बात रुमा ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो युवा होते हैं ना हमारे, ये अपने दिमाग से उस वक्त काम नहीं लेते जो पीछे से फीडबैक दिया जाता है ना कि ऐसे करो, वहां पे चले जाओ, और वो चीज सामने नहीं आती है, वो पीछे ही रह जाती है, लेकिन सामने वो आ जाते हैं जो कि इस दंगों फसादों में
0: बिल्कुल। और एक चीज आपने जैसे बोला ना, युवा ही ऐसा ज्यादा जोश में होते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है बेरोजगारी भी है।
1: हाँ।
0: और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को उकसाते हैं कि ये सब सरकार की वजह से हो रहा है और सरकार हमें ये नहीं दे रही है, ये सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे आपने पीछे देखा होगा पंजाब में कई प्रकार के दंगे भड़काए गए, भड़के भी हैं, हम ज्यादा बात उस तरह की नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को अवेयर करना है कि अगर हम किसी प्रकार की ऐसी कोई अगर बात करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और हम किस तरह इन चीजों से बच सकते हैं। और मुझे लगता है युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसके लिए एफर्ट करे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं वो काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह है काम कर रहे हैं, यूथ क्लब हैं जहाँ पे इन क्लब्स के साथ जुड़कर यूथ जो है अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे निर्णय ले सकते हैं। उनको सोच समझ होनी चाहिए कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो नुकसान
1: हमें
0: अपना है। और ज्योति जी मुझे लग रहा है कि बातें ज्यादा हो रही हैं और
1: मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के बारे में बात हुई है तो हम युवा से संबंधित कोई गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, और ऐसा ही एक थोड़ा सा गीत अगर हम अपने दोस्तों को सुनाएं तो मुझे लग रहा है कि ये जो गंभीरता हमारे विषय की है वो थोड़ी सी हल्कापन उसमें आ जाएगा।
1: हम भी हल्कापन ही चाहते हैं, ज्यादा गंभीर होना नहीं चाहते।
2: कहता हूँ कभी मैं घूर घूर कहता हूँ,

0: रुमा जी, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं बातचीत करने के लिए दोस्तों के साथ। अब आप ये बताएं हमें, ये जो पब्लिक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको जब कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम आम पब्लिक की भागीदारी क्या रहती है?
1: देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एक तरह से हम सब उस संपत्ति के अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं। तो एक मालिक होने के नाते जो भी संपत्ति होती है उसका हम जैसे घर में बचाव करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में अगर कोई बाहर से आ जाता है, कोई भी दंगा फसाद करता है, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखें, खुद को सेफ रखें और हमें कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले तो आम नागरिकों की, सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर हम भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं या उन दंगों में हमें डर लग रहा है, हमें अंदेशा है कि यहाँ पे कोई दंगा भड़क सकता है, नुकसान हो सकता है, तो जो भी उस ग्रुप में, जो भी वहाँ पे हैं, जो भी समझदार व्यक्ति हैं, उनको समझाएं कि हमारा जो प्रदर्शन है किसी भी चीज के लिए है, जिस भी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वहाँ पे हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और ज्यादातर आपने देखा होगा ज्योति जी, हम जब भी किसी दंगे की बात होती है या जब भी कोई नुकसान बड़ा हो जाता है तो आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान होती है इन चीजों से।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और हम जब डिस्कशन करते हैं आपस में तो ये कहते हैं कि जिस संपत्ति को हमने नुकसान पहुंचाया है उसके लिए टैक्स हमने भरा है,
0: हम ही भरते
1: हैं, हमारी ही जेब का पैसा लगा है और हमारी ही हाथों से उसको नुकसान हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी इस तरह की गतिविधि में शामिल हो या हमें लगे कि ऐसी गतिविधि हो सकती है, तो सबसे पहले हमें अपने आस पड़ोस को, खुद को इस बात के लिए अवेयर रखना है कि कुछ भी हो जाए हमने संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान भी हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, जहां पे हम रह रहे हैं उस जगह को कितना पीछे ले जाता है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है और इसका खामियाजा हम सभी भोगते हैं।
0: खामियाजा तो हम भुगतते हैं, लेकिन रुमा होता पता क्या है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर ये सब हो रहा होता है, हम ना चाहते हुए भी उस भीड़ का अगर हम हिस्सा बन जाते हैं तो हम वहां पर आते टाइम उस वक्त किसी को नहीं समझा पाते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि हमें अपनी भी, अपना भी देखना होता है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, हम पीछे रहें।
1: बिल्कुल, यही हमारी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हमें करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम अवेयर कर सकते हैं जनता को, औरों को अवेयर करने से पहले तो हमें खुद को अवेयर करना है, हमारे हाथों किसी को कोई नुकसान ना होना चाहिए। आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि, और मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम किसी चीज की डिमांड सरकार से करते हैं तो हम अपनी बात शांत तरीके से, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो और कोई विकल्प ना ढूंढते हुए हम तोड़फोड़ पे आ जाते हैं, आगजनी पे आ जाते हैं और इस तरह के कई आपने हादसे देखे होंगे। अभी पीछे हमारे यहाँ हिमाचल में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत तरक्कियां भी हुई हैं, वंदे भारत ट्रेन आती है, तो आपने सुना होगा कि पीछे उस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या इन चीजों से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर हम, हमारा विकास हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आज हमारे स्टेट में ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं और भी काफी सारे बदलाव आए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन के हब जो है अब हिमाचल भी हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो बने हैं, और अगर देखो और इनका सारी चीजों की जो यूटिलाइजेशन है वो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही इनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये नुकसान बहुत, इसकी भरपाई जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है।
0: इसकी भरपाई के लिए हमें और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा
1: और
0: है।
1: ये जो महंगाई जो बढ़ती है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो शामिल होती हैं।
0: तो मैं, एक और गीत का वक्त हो गया है कार्यक्रम में,

0: ज्योति जी, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया आपने और मजा आ गया गीत सुन के। तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस कार्यक्रम में।
1: यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है? अब हम सजाओं के बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर दंगे होते हैं, कहीं प्रदर्शन होते हैं, कहीं आगजनी या किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हो जाता है तो वहां पे जो है पुलिस की एक ड्यूटी हो जाती है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, कई तरह के केसेस ऐसे रजिस्टर्ड भी होते हैं। इसमें जो कानून है, ये जो बनाया है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस एक्ट, इसके तहत सरकार ने जो है वो सजा के भी प्रावधान किए हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला इस तरह के मामले में दर्ज हो जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, और सजा के साथ साथ इसमें जुर्माना
1: भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं जब भी कोई इस तरह का मैटर आता है तो हम बिजली काट देते हैं, पानी की पाइपें तोड़ देते हैं, पानी की सप्लाई रोक देते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जब बात नहीं मानी जाती है तो हमारा क्या होता है कि हम अगर पानी बंद कर देंगे किसी का, बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो भी हमारे साथ आके शायद हमारे लिए बात करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब हम इस तरह का नुकसान करते हैं, जैसे मानो पानी की पाइपें तोड़ दी, बिजली की तारें जला दी, कुछ भी कर दिया इस तरह का नुकसान, तो यहाँ पर भी 6 महीने तक की जो है वो कम से कम जेल हो सकती है। और अगर उस अपराध की गंभीरता अधिक है, नुकसान की जो जिसको बोल सकते हैं
1: ज्यादा कर दिया,
0: ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है, तो ये सजा भी 5 साल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पे ऐसे होता है कि हम विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में ये जो सजा है, जो कम से कम सजा है वो 1 साल है, और इसमें अधिक से अधिक जो सजा है वो 10 साल है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, और वहां पे भी वो कठोर जेल होती है, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। तो साथ में इसमें नुकसान जो है, सॉरी, इसमें जो जुर्माना है वो भी 50,000 से लेके 2 लाख तक का आपको जो है जुर्माना सरकार को देना पड़ता
1: है। यहाँ से ना एक अलग विषय पर बात करूंगी, अलग तरफ चलती हूँ जरा, कि चलो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कई लोग ना जिद बाजी में आकर के कि हमारी बात मान ले कोई, चाहे वो सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हो या किसी व्यक्तिगत मामले के लिए, कोई ट्रेन के छत पे चढ़ जाता है, कोई बस के ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे में भी क्या सजा होती है?
0: बिल्कुल होता है। आप अपनी जान को अगर खतरे में डाल रहे हैं या आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में आ रही है तब भी सजा का प्रावधान है। जैसे आपने बोला कि बस की छत के ऊपर चढ़ के, हमने देखा है कि अभी तो शायद कम हो गया है, पहले समय में बसेस बहुत कम होती थी तो बस की सीटों के छत के ऊपर सफर करते थे लोग, वो भी क्राइम है, और वहां पर भी 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।
1: जी अच्छा, यानी कि जब आप उतरेंगे

0: तो आप पकड़े जाएंगे, ये याद रखिएगा।
1: बिल्कुल। और लेकिन अब तो लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है और काफी हमारे पास संसाधन भी हैं, तो छतों पे अब मेरे को लगता नहीं कि यहाँ कोई सफर करता है।
0: अभी भी वैसे आजकल को कभी कभी कोई एका दुक्का वीडियोस देखने को मिल जाते हैं कि छत पर तो नहीं लेकिन कोई साइकिल से चला हुआ है ना, तो वो बस की पिछवाड़े को पकड़ देता है कोई डंडे वंडे को, अपने रास्ते पे सही जगह।
1: बिल्कुल। और देखो अपनी जान को तो नुकसान में वो डाल ही रहा है, लेकिन अगर ऐसे करते हुए अगर वो कहीं उसका हाथ फिसल जाता है, छूट जाता है, बस के नीचे आ जाता है, तो आप देखिए कि सीधा का सीधा केस जो है वो बस चलाने वाले के ऊपर बनता है। तो यहाँ पर भी अगर पता चल जाता है कि गाड़ी चलाने वाले की या साइकिल वाले की गलती है तो उसके ऊपर केस दर्ज
0: होता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना स्कूल से घर को जा रहे होते हैं, वो भी बस में पीछे की तरफ लटक जाते हैं और पता नहीं होता कंडक्टर को।
1: बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत है, इसलिए तो इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि जो भी परिवहन चालक हैं उनको बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बस के पीछे कोई लटका तो नहीं है या इस तरह का कोई गलत तरीके से बस को पीछा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो उनको खुद ही एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ
0: गीत सुनने।
1: बिल्कुल ज्योति जी, अब हो गया है समय गीत सुनने का, तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: खूबसूरत से गीत के बाद रुमा जी, अब मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ इस विषय पर। ये मत समझिए आप श्रोताओं कि ये बहुत छोटा सा विषय है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है अभी इसमें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दंगे होते हैं लोग तो भाग जाते हैं, कोई मिलता नहीं, फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट उस जगह पर, तो कैसे पता चलता है पुलिस को कि कौन कौन लोग वहां थे? कुछ कुछ तो वीडियोस भी बनाते होंगे खैर, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कोई लोग ऐसे भी होते होंगे बीच में से जो मुखबिर भी होते होंगे, कुछ बताते भी होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और फिर सजा का प्रावधान कैसे रहता है?
1: सजा के उपबंधों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कौन से अपराध में कितनी अपराध की गंभीरता है, उसी हिसाब से सजा जो है वो निर्धारित होती है। लेकिन आपने बात करी कि ये बात और बहुत सोचने वाली भी है कि जब दंगे हो रहे होते हैं तो वहाँ बल्क में भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसने नुकसान पहुंचाया पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसने किया, किसकी जवाबदेही रहेगी, तो ये सच में सोचने वाली बात है। और आजकल का तो जो टाइम है वो सोशल मीडिया वाला है।
0: क्या केवल उसी को पकड़ लिया जाता है जो नेतागिरी कर रहा होता है उस वक्त?
1: बिल्कुल, जो नेता होता है जिसके कहने पर वो दंगा बुलाया, जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है किसी भी प्रदर्शन के लिए, जिस भी ग्रुप ने, समूह ने उनको बुलाया है, उनकी जो जवाबदेही होती है वो सबसे पहले होती है। सबसे पहले अगर कहीं पे भी नुकसान होता है तो आह्वान करने वाले व्यक्ति को या समूह को जो है वो पुलिस जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसमें शामिल करती है। वहीं से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस किस व्यक्ति द्वारा कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में आपने देखा है कि यहाँ कोई मर भी रहा हो तो हम उसको डॉक्टर के पास पहुंचाने की बजाय पहले वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो फुटेज से भी पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने फलां प्रॉपर्टी को फलां नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह से जो है वो सबकी जवाबदेही बनती है। और उस भीड़ में जैसे मानो एक गाँव से लोग गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो FIR होती है वो पूरे ग्रुप के ऊपर दर्ज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पता होता है कौन कौन से लोग वहाँ पे गए हैं, तो उन सबकी जवाबदेही हो जाती है। वहाँ से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने दंगे को अधिक भड़काया है, किसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो इन लोगों के खिलाफ FIR या एक्शन हो सकता है। और एक चीज और ज्योति जी, FIR की बात जब आती है तो जब दंगे हो रहे होते हैं ना, तो और ग्रुपिज्म जहाँ पे होता है तो आम पब्लिक डरती है इन चीजों से कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे चाहे उनके सामने कुछ भी नुकसान हो गया हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है किसी भी नुकसान के बारे में, तो उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। फोन के माध्यम से भी आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि एक देखो जिम्मेदार नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मेरे इलाके में कुछ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आज इस बिल्डिंग को ये दंगाई जो है वो जला देंगे या ये पुल तोड़ देंगे या फिर किसी स्कूल को नुकसान पहुंचाएंगे, देखो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि कोई बड़ा नुकसान।
0: पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना कई बार आम नागरिकों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, शायद इस वजह से कोई खुल करके सामने आना नहीं चाहता।
1: लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस डर से बाहर हमें निकल जाना चाहिए। हम 100 नंबर पे पुलिस को सूचित कर सकते हैं या जो भी हमारा स्थानीय थाना है वहां पर हम गुप्त कॉल के माध्यम से अपने वहां पे हो रहे नुकसान के बारे में पुलिस को सूचित कर
0: लेकिन
1: सकते हैं।
0: लेकिन कई शातिर लोग होते हैं ना, उन्हें पता भी चल जाता है कि किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो होता क्या है कि वो कानून के तहत उनको अंदर ही रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको बेल भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो आपने बेल के बारे में बात करी, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं इनको गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो इसको आसानी से जो है वो बेल नहीं मिलती है जब तक कि वो साबित ना कर दे कि वो उस दंगे में शामिल नहीं है। और अगर वो उस दंगे में शामिल पाया जाता है, उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर उसको बेल मिलना आसान नहीं होता है।
0: तो मुझे एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे कि कई बार ना हमारी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अलग अलग विषयों पर बनती हैं, और उनको देख करके कई बार तो मन में बड़ा जोश आ जाता है कि हाँ भाई हम भी अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और कई बार ऐसा डर सा जाता है इंसान उल्टा कुछ लोग कि नहीं नहीं अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हम कोई सूचना देते हैं कुछ करते हैं तो देखो ना वो जो नायक होता है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो तो उससे भी कई लोग, या मैं यूं कहूं कि प्रेरणा लेते हैं, कई लोग डर जाते हैं।
1: देखो ज्योति जी, फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो पहले ही बताया होता है कि सब कुछ काल्पनिक है, और जो फिल्मों में होता है वो हमारी रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर हमारी जो जनता है या आम आदमी है वो ये सोच के राय बना लेता है कि फिल्मों में ऐसा हुआ था और हम ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, उसकी आइडेंटिटी है, अगर वो चाहता है कि गुप्त रखी जाए तो वो पूरी तरह से गुप्त रहती है, और पुलिस को लगता है कि फलां व्यक्ति के बारे में अगर पता लग गया है, कि दंगाइयों को पता लग गया कि इसने सूचना दी है तो उसकी जान माल को नुकसान है, तो सरकार उसको प्रोटेक्शन भी देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मों को देख के अगर हम राय बना लेंगे और हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से कई तरह के नुकसान हो जाएंगे और इनडायरेक्ट हम खुद उस नुकसान।
0: देखिए वैसे हमने तो डरना कभी सीखा नहीं है, पर हाँ कई लोग हैं जो लोग इस तरह से सोचते हैंडर जाते हैं
1: जी।
0: चलिए रोमा जी, ये तो रही बात थोड़ी सी हंसी मजाक की भी हो गई
1: जी जी,
0: और कुछ नॉलेज भी मिल गया है लोगों को
1: जी।
0: अब ये बताएं कि ये जो नुकसान हो गया, ठीक है, अब दोबारा से वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बस अगर जल गई है तो एक और बस लानी पड़ेगी, ट्रेन टूट गई है उसको बनाना पड़ेगा, उसके शीशे वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होती है?
1: जो भी दंगाई होती है, जो भी दंगों को भड़काते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सभी व्यक्ति जो है वो इस नुकसान की भरपाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे पहले अब बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा इसने नुकसान पहुंचाया। तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो भी व्यक्ति समूह का मुखिया है उसका, या जो भी ग्रुप वहां पे या नेता है वो वहां पे उन दंगाइयों को लेके आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी नुकसान पब्लिक को हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हुआ है, उसकी भरपाई वो अपनी जेब से करेंगे, और
0: चाहे उसने कुछ नुकसान किया है या नहीं
1: किया है। किया है बिल्कुल।
0: अच्छा।
1: क्योंकि देखो वो लेके तो वही आया वहाँ पे पब्लिक को, और वहाँ पे जो भी उसने उसका भड़काऊ भाषण दिया या जो भी उसने बातें करी, जिसके मद्देनजर जो है वो पब्लिक भड़क गई और उन्होंने, आपने कहा बस जला दी, बस जला दी। अब देखिए बस की तो कोई गलती नहीं थी उसने ना, तो भड़काने वाले की तो जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहाँ पे उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो अगर कहीं वहां पे मिल जाती है, या उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, तो जिस भी व्यक्ति की वहां पे पिक्चर सामने आ जाती है उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है, जिसने नुकसान पहुंचाया है, और उस नेता की, कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। और एक चीज और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जैसे मानो मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया है और आपने उसकी भरपाई अब मेरे को ही करनी है, और मेरी जेब में पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो अगर मेरे नाम पे जितनी भी संपत्ति है वो सारी कुर्क हो जाती है, और सरकार जो है उस संपत्ति की कुर्की करके उस नुकसान की जो है भरपाई करती है।
0: रुमा, ये तो रही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी बात, लेकिन ऐसे दंगों में ना कई बार प्राइवेट जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, बाइक्स होती हैं और कारें होती हैं, उनको भी तो नुकसान पहुंचता है।
1: बिल्कुल, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ग्रुप की या उसी समूह की होती है जो जहां पे दंगा भड़का रहा है, और उसके नुकसान के लिए जो अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वहां पे नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए मैं सरकार के आगे एप्लीकेशन दे सकती हूं कि ये नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई की जाए या करवाई जाए
0: जी। क्योंकि सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात नहीं, साथ साथ में हम और भी बातें लेंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह से जो है इसका, इसकी अवेयरनेस हो सके, जागरूकता बन सके।
1: बिल्कुल, देखो ज्योति जी, जब पब्लिक, जहां पे पब्लिक है वहाँ पे प्राइवेट पर्सनल व्यक्ति भी हैं, है ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो जब नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है तो वहाँ पे आम आदमी को भी तो नुकसान होता है, और उस आम आदमी के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को करनी पड़ती है जो वहाँ पे दंगा या प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए कितना गंभीर सा विषय हम लेके चले हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ज्योति जी के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। कितना सीरियस होके सुन रही है मैं ज्योति जी, और हमारी, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त भी इतना ही सीरियस होके सुन रहे होंगे,
0: ध्यान दे रहे होंगे पूरा।
1: बिल्कुल, और ये चीज ध्यान देने वाली भी है। देखो हम तो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दंगों की बात कर ली हमने, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने आम देखा है गाँव में लोग लड़ते हैं आपस में, तो मेरे घर के पास से सरकारी पानी की पाइप जा रही है, और वो आपके घर तक आ रही है, मेरी और आपकी बनती नहीं है। अब मैंने आपको पानी नहीं जाने देना है, तो मैं बीच में पाइप काट दूंगी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी उसी का नुकसान है। हम छोटे नुकसान की बात करके चलें, अगर मैंने पाइप काट दी है और कहीं पे भी वो सीसीटीवी में या आपने रिकॉर्ड कर लिया है कि यही उसको नुकसान करता है, तो आईपीएस विभाग में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं आप, और उस पाइप का जो डैमेज है उसको भरने के लिए आईपीएस विभाग जो है वो मुझे फोर्स कर सकता है, या मेरी जिम्मेदारी हो जाती है वहां की, मैंने पाइप तोड़ी है, चाहे गुस्से में तोड़ी, आपको दुख देने के लिए तोड़ी, आपको परेशान करने के लिए तोड़ी, लेकिन थी तो वो सरकारी विभाग की पाइप, तो मुझे वो ठीक करवा के देनी ही थी।
0: इसे ये बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में कि आप अपने घर के आसपास में कैमरा लगवा लें, या फिर दो चार जो लोग हैं घर हैं वो आपस में मिल करके एक ऐसी जगह पर फिट करवा लें ताकि वहां से बिल्कुल साफ साफ नजर आए कि कौन क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल, पर ज्योति जी मैं तो अब यही कहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बजाय अगर हम लोग हमारे दिलों में जो गांठें हमने बांध रखी हैं उनको खोल दें, तो मुझे लगता है कि जो आपसी सद्भाव और प्रेम हमारे बीच होगा वो अपने आप ही हमारी छोटी छोटी जो उलझने हैं, छोटी छोटी शिकायतें हैं, वो खत्म होती जाएंगी। और देखिए इंसान है ही शिकायतों का पुलिंदा है, तो हम छोटी छोटी चीजों को बांध के रख लेते हैं, ये चीजें हमें छोड़नी होंगी, जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक नुकसान हम अपना भी करेंगे और औरों का भी करेंगे।
0: बिल्कुल, जैसे कि रूमा और मैंने छोड़ दिया, और देखो आज हम लोग बिल्कुल साथ साथ में बैठे हैं।
1: जी देखिए, प्यार जो वहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ संभव है, हर एक चीज जो है वो प्रेम भाव से ठीक हो जाती है, और बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई थी वो सुलझ भी जाती हैं। तो मेरा दोस्तों से यही अनुग्रह है आप लोगों से कि छोटी छोटी चीजों को अपने मन पे मत रखिए, और ये देश हमारा अपना है, और हम देश की बात ना भी करें तो जहाँ हम रहते हैं वो गांव, वो घर, वो पड़ोस, वो सब हमारा अपना है, और अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो यही सद्भाव हम आगे फैलाते जाएंगे और पूरे देश में प्रेम भाव जो है वो फैलेगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। और एक इसी बात पे मेरे को ना एक ज्योति जी गीत याद आ गया है, वो गीत मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को सुनाए, देश प्रेमी फिल्म का गीत है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो।
0: रुमा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने देखा है आपको भी गुनगुनाते हुए गाते हुए कुछ कुछ छोटी छोटी रील्स में देखा है, और मैं चाहती हूँ कि इस गीत की एक लाइन आप ही शुरू करें।
1: अरे मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ यही गीत सुनना है मुझे, मेरे देश प्रेमी।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज इस उड़ान में आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया।
0: हमेशा रूमा गुलेरिया तो होती ही है आपके साथ लेकिन आज मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के आ गई हूँ। मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे मेरा मन किया कि मैं इसके बारे में रूमा जी से क्वेश्चन करूं। और रूमा जी तो हर कानूनी दांवपेच में माहिर ही हैं, वो बता ही देती हैं कि क्या कैसे होना चाहिए और क्या क्या एक्ट है और साथ में क्या क्या सजा का प्रावधान है, और साथ में वो सलाह भी देती हैं बहुत अच्छी।
1: देखिए अब बात बताएंगे किसी को किसी भी कानून के बारे में तो सलाह देना हमारा फर्ज भी बनता है। और मैं तो यही कहूंगी सबसे कि सारी संपत्ति हमारी अपनी है, इसको संभालें, इसका रख रखाव करें अच्छे से, उचित प्रबंधन करें, ताकि हम ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें ये कहें कि हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है। जैसे हम कहते हैं हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छा कल्चर जो हमारे सामने है। आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कहीं कहीं मनों में भेद हैं तो मैं तो यही कहूंगी मतभेद ना रखें किसी के साथ, और मन में भी भेद ना रखें। जो भी आपके मन में है वो खुल के कहें, खुल के बात करें, और अपनी इस संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो करें।
0: जी, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए या बाहर कहीं पर निकलते हैं घर से बाहर और इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं, टूटी फूटी सी इमारतें हो जहां पर आप जा रहे हैं या वहां पर कुछ लिखा विखा हो, याद रखिएगा अगर आप इमारतों पे कुछ लिखते हैं ना, वो उसमें भी सजा का प्रावधान है अगर आप लिखते हुए पाए गए वहां पर तो।
1: और देखो ज्योति जी, हम हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ खाने का ले लिया, कुछ भी कर लिया, हम इंजॉय करते हैं और वो कचरा वहीं पे फेंक देते हैं, तो ये भी हम एक तरह से अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक गलत जो नॉलेज, जो पिक्चर हमारी है वो लोगों के सामने जा रही है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो यही जाके कहता है हिमाचल में नदियों में कचरा भरा पड़ा था या वहां पे कूलें जो है वो कचरे से अटी पड़ी थी, तो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: रूमा, एक नुकसान और भी करते हैं लोग, खास करके अगर मैं युवा जोड़ों की बात करूं तो जो लोग घूमने आते हैं या हमारे भी लोकल अगर जाते हैं तो देखो हिमाचल है हमारा पेड़ों से, है ना, पेड़ों की वजह से ही हमारे यहाँ पर ठंडक है और बारिश होती रहती है, असम में बारिश आजकल भी हो रही है, तो पेड़ों के तने पे वो अपने नाम लिखते हैं, खोद खोद के उसे खराब करते हैं।
1: बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए,
0: वो भी हमारी अपनी ही प्रॉपर्टी है।
1: बिल्कुल, और देखिए बोलते हैं हरियाली है जहाँ जीवन है वहाँ, और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को कि हम हिमाचल में हैं। आज पूरा देश तप रहा है गर्मी से और हम आज भी यहाँ पे ठंडी ठंडी बुछारों का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा मौसम है, लोग घूमने आ रहे हैं, तो घूमने आने वालों से भी आग्रह है कि जगह जगह गंदगी ना फैलाएं, अपने साथ छोटा सा एक लिफाफा रखें, जो भी आपके कचरा है उसको उसमें रखें। हम भी कहीं जाएं तो हम भी यही करेंगे, और मैं तो ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कहीं भी गंदगी डालते हैं तो हम अपने बारे में लोगों को, हम कितने फूहड़ हैं, कितना हमें क्या बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल हैं हम, तो वो हमारा ही प्रदर्शन सामने जाता है। तो आप घूमिए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस मौसम का, और साथ ही साथ सफाई का भी ध्यान रखें।
0: और सिविक सेंस की बात आजकल हर रोज ही हो रही है, जो भी मोबाइल उठाओ तो आपके सामने सिविक सेंस के बारे में बहुत सारी रील्स हैं, वो आपको भरी पड़ी हुई मिलती है। तो ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और ये भी आपके सिविक सेंस में ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ तो आप ने सीखा होगा, समझा होगा, और आगे अपनी पीढ़ी को भी बताएंगे, आसपास के लोगों को भी समझाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे और ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया
0: को दीजिए अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ
1: इसी कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन के वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल ना करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तो।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ भैया? इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलू?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगाता।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

0: कानी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। ता माटी दी महक कार्यक्रम दा जेड़ा शुरुआत है से जरूर अहां करी ती है कने तुहां सारे भी शुरुआत करने जुड़ी होने न इंतजार तुह जो रहता है। वैसे तो तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय तुहां तक रहता है 2 ते 3 बजे तक, पर फिर भी अहां जेड़ा से बार बार तुहां तक पहुँचाते हैं कि कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से जरूर शुरू होई है। कने श्रोता भी समय दे अनुसार जेड़ा से कॉल करना या व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना जेड़ा से शुरू हो जाते हैं। नंबर भी तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर पहुँचाना भी जरूरी है। कई श्रोता होंगे कि स्टूडियो का जोड़ा नंबर नहीं आता से ही सोचते कि कालू दिया नंबर दिना तक अहाँ पहुँचाते न कने कालू दिया से इस नंबर पर कॉल करते न। नंबर नोट करा तो हाँ नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने इसी कने पहले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हैं कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुह रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
1: माया बोल सुकड़े
0: जी माया जी सुकड़े ते रहने वाले न
1: जी
0: ता माया जी क्या हाल चाल है जी तुहंदा।
1: हाल चाल चले आ बहुत दे पेट में तो नहीं दो
0: जी जी बस जी
1: कम कार करने जो भी निकली बस ये जे इंतजार कर दो लोग मुझे इसको लेना
0: जी इंतजार तुहां कर दे जी ता इंतजार फिर जल खत्म हो जाता ता तालू तुहां क्या फील कर दे कदिया लगदा तुहां जो
1: हां बोल दे जी हम सुन दे रही है ता ठीक है
0: जी अच्छा सुन दे रही है ता ठीक है जी जी सही है ना कि हर समय दी लिमिट होंदी ना जी जी जी हर काम समय के अनुसार होना जरूरी है जी जी जी अच्छा 4 बजे का जेड़ा प्रोग्राम है तुसे भी सुन दे तो
1: बदाली वो मुझे बड़ा पसंद है इंदा
0: जी जी चलो अच्छी गल है जी। हां जी हां जी
1: थैंक यू मैम
0: जी चलो अच्छी गल है जी रेडियो करने तो हाँ मन लगाया ना जी अपना जी ता माया जी आज क्या पसंद है तुहंदी कुन दे गीत तुहा सुनने आज
1: आज मेरे पसंद है माता का भजन कुंडली माता
0: जी कुंडिया भजन सुनने जी
1: सली माता दा
0: सली माता दा
1: जी
0: जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचान दी जी जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: बड़ा धन्यवाद जी तुहाडा भी
0: जी। तो शो तो वहां भी पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करी लैंदे न कने बाकी दिया जेड़ा गल्लां न से तुह तक लेकर आंदे न पर आगाज अहां इस गीत कन्ने करा देना तुहां सारे भी इस गीत जो जरूर ध्याने ने सुना

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या श्रोता जीड़ा ने सहा करने जुट चुके न कर दें तीना करने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: जी नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तो हुंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना जी। यहाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ क्या काम कार लगाया क्या करा दे जी। तो हाँ अपने रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे जी।
1: हाँ जी कर लेंगे होगी
0: जी जी जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी।
1: गाड़ी से बोला था मेरे नाम
0: जी। तो मेघनाथ जी क्या काम कार आज तो हाँ छेड़िया क्या करा दे जी। अच्छा राम करा दे कने प्रोग्राम सुनना जी जी जी। जी अच्छा रंग बिरंगा जहाज सुनना है तो हाँ आज जी जरूर जी। तुहंदी जेड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुंचानी है पर अकेलापन कने आज कने दौर दी अगर अहां गल करन ता इदे उपर अहां जरूर आज गल बात करनी है ना जी।
1: गाना जेड़ा गाया तां मैं लाला जी ने बहुत रोक के गाया
0: जी जी। बड़ा ही प्यारा गीत है ना जी।
1: बहुत बढ़िया गाया ना सबके से है
0: जी जी।
1: चल जेड़ा साहब साहब सा से क्या था उनका
0: किस तरीके ने लेई करी ज्यादा अकेलापन जी जी
1: सब अपने
0: जी
1: मेल मिलाप बड़ा बहुत घट हुई
0: जी। बड़ा ही घट हुई है ना जी।
1: हाँ जी क्या पता आगे आगे क्या बढ़ना है
0: जी जी। चलो अपनी तरफ से कोशिश करना काम है ना जी।
1: हाँ बिल्कुल गलाना है हमदा ना
0: जी जी जी। तो जरूर जी मेघनाथ जी तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दे ना तशुताओ आज यहाँ कार्यक्रम च जेड़ा गलबात करनी है से पहले भी मैं तुहां तक पहुंचाई थी है पर एक बारी फिर ते तुहां तक पहुंचाई दी है अकेलापन कने आशकना जेड़ा दौर है कने तुहां सारे ये बड़ा प्यारा दिया गीत जेड़ा से सुनिया करनैल राणा दी आवाज़ च कुथी ना कुथी ये यहाँ जो अपनापन अपना जेड़ा एहसास है से जरूर दिलांदा है। हुण तुहां सोचा दे होणे ना कि आशकने दौर च अकेलापन किस तरीके ने है। अकेलापन तो हर जगह हाँ जो दिखने जो मिलता है अगर अपनी फैमिली की गल करिए कुथी ना कुथी फैमिली च ही यहाँ अपना खुद जो अकेलापन जिहड़ा से महसूस कराते हैं या अपना ज़्यादा समय जिहड़ा से यहाँ सोशल मीडिया पर या मोबाइल फोन च दिंदे न। इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न सियाह कने जुड़ चुके न कने तो हाँ फेसबुक लाइव भी जरूर जितने भी लिसनर हैं सियाह जो फेसबुक लाइव पर भी दिख सकते करना है तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है। हेलो
2: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्ते जी स्वागत है जी। तो हम अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लेंगे जी।
2: एक मिनट
0: जी कर ले तो हाँ आवाज कम।
2: हाँ जी
0: जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी।
2: विजय कुमार धर्मशाला
0: जी। विजय जी धर्मशाला ते बोला दे।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो विजय जी कदिया मौसम है जी धर्मशाला दा
2: वैसे बैठ भी धूप लगी धूप है
0: जी। अच्छा धूप लगी हो।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। मौसम तो बिल्कुल साफ है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी। जल्दी बरसात कराउंदे बरसात कमांदी कुछ पर हो ठीक है मौसम
0: जी जी। पिछले साल तो बड़ा ज्यादा नुकसान होया ना जी।
2: हां जी हां जी मेरे को जाओ
0: जी जी। तो विजय जी आज हां जेड़ा गल बात करा देना से करा देना अकेलापन कने आजकना जेड़ा दौर है तिसने किस तरीके ने रिलेट करदा है तो है क्या लगदा आजकने दौर दी अगर हां गल करिए ता हर कोई अपने जितना ज़्यादा बिजी है कि अहाँ समय भी नहीं है कने अहाँ अपने वास्ते समय नहीं दे पाते न या समय है भी फिर भी अहाँ कुतू है अपना समय जड़े से दे दे
2: फोने पर
0: जी जी जी अच्छा
2: फोने पर बिजी रहने देता कौन सा
0: जी जी जी तो तुम्हें क्या लगता अपना जेड़ा समय है से समय देना फैमिली जो कितना की जरूरी है कितना की जरूरी है भी या नहीं है तुम्हें क्या लगता
2: मेरी फैमिली वास्ते टाइम कढ़ना जरूरी है
0: जी जरूरी है तो हम भी सा गलते सहमत हैं कि फैमिली वास्ते समय निकालना जरूरी है
2: जी मैडम जी
0: जी दिखा अगर हम पुराने समय दी जेड़ा से गल हम बार बार कर देन पर से दौर ऐसा था कि तिस अपनापन दिखने जो मिलता था ना जी
2: मैडम मिलता हां पर बड़ा घट मिलना
0: जी जी उन ता बिल्कुल ही कम है ना जी
2: हां जी मैडम जी उन बड़ा घट
0: जी तभी जी जी आज तो हां कुन दिया गीत सुनना पसंद कर गए जी
2: चंबा ते चवाड़ी सुनाई दिया
0: जी चंबा ते चवाड़ी सुनना है तो हां
2: जी
0: जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान दे जी जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तोहंदा
2: ठीक है मैडम जी
0: तो शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो जो लेकर चलते न अगली फरमाइश दी और अगली फरमाइश यहाँ तक पहुँची है माया जी दी कने से रहने वाले न सुकड़े थे तिना तक कहाँ ये भजन पहुँचा देना तो सारे भी इंजॉय करा

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कने फेसबुक के माध्यम ने यहाँ तक जेड़ा कमेंट ऐसे पहुँचे है इंदु जी का, तो जरूर इंदु जी ने जेड़ा अपना कमेंट लिखा है कि तो हाँ जेड़ा कार्यक्रम का आगाज किया है से बड़े ही प्यारे गीत कने किया है, तो इंदु जी तुहुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी सुनने वास्ते कने दिखने वास्ते भी, क्योंकि अज जेड़ा हाँ दी गलबात है सभी कुछ जेड़ा गीत तुहां सुनया है तिदे जेड़ा रिलेटेड ही है, क्योंकि अकेलापन कने आजकना जेड़ा दौर है कई बार हाँ अपने घरे ते चलो निकल देन ता बस, कई बार हाँ अपने घरे ते चलो निकल देन ता बस जहाँ ट्रैवल कर देन तो कुछ ही ना कुछ यहाँ अपने आसपास भी कुछ नया दिख देन, या अपने आसपास जितनी भी सवारियाँ बैठी होती हैं तिना जो दिख देन तो कुछ ही ना कुछ से हमेशा कुछ बिजी होंगे मोबाइल फोन च, थोड़ा दिया मने च जेड़ा विचार है से आया कि कयो नहीं आज दे ऊपर ही गलबात करिए, क्योंकि एन तो हाँ बैठे किट्ठे ही पर जेड़ा मोबाइल फोन है से जरूर अहाँ लै अहाँ घंटों घंटों जेड़ा है से मोबाइल फोन च देन देन रील स्क्रोल करा देन, या फेसबुक की गल करिए फेसबुक च भी अहाँ दे बड़े सारे फ्रेंड हैं, या इंस्टा की गल करिए तो इंस्टा पर भी अहाँ दे बड़े सारे फॉलोवर हैं, व्हाट्सएप की गल करिए तो इस भी जेड़ा बाकी फ्रेंड हैं अहाँ दे सभी हैं, कने इसी कन्नै अगर अहाँ ज़्यादातर अहाँ फैमिली की गल करिए तो अहाँ अपनी फैमिली कन्नै बैठे हो तो तुहां भी थोड़ा जिहा सोच विचार करके दिखा कि तुहां अपनी फैमिली कन्नै बैठे हो, मैं तुहां जो उसी जगह तक लेकर ही चलती है तुहां अपनी फैमिली कन्नै बैठे हो तो तुहां क्या काम करा देन, सोच विचार करके दिखा कि क्या काम तुहां जिहड़ा ऐसे करा देन, मोबाइल फोन चला देन कि अपनी फैमिली जो समय दे देन, या तिना कन्नै अपनी जेड़ा गलबात है से सांझा करा देन, या तिना जो

0: बर्बाद करा दे या सोशल मीडिया पर अहाँ इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अहाँ ना अपनी फैमिली दी गल सुनी पा दे ना अहाँ अपने जड़ा तनाव है उस जो काम करी पा दे। थोड़ा दिया सोच विचार करके देखा कि क्या तुहां सही करा दे या तुहां किस तरीके ने अपनी फैमिली जो जड़ा समय है से दे देन। कई बार अहाँ मैं पहले भी एग्जाम्पल दिता कि अहाँ बस ट्रैवल कर देना तो कुछ ना कुछ जड़ा हैडफोन से भी अहाँ कुछ ना कुछ अपने कन्ना नहीं लगाए होंगे अहाँ जो अखे वखे की जड़ा दुनिया है बारह की दुनिया इतिहाद कोई पता अता पता नहीं है मतलब बिल्कुल अहाँ मोबाइल फोन च ही घुसी हो तो जरूर अगले जड़ा श्रोता ने तिना कन्ने कर देन गलबात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जैसी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी बिल्कुल जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी। तुहांदा भी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
1: जी
0: जी ता
1: आज
0: जी
1: जी जी आज मैं बोले तो हां जरा टॉपिक लिया ना
0: जी जी
1: मैं इसने रिलेटेड कुछ गल मैंने मुझे याद आई तो मैंने मैं बोल दी
0: जी जरूर जी।
1: ए पिछे गर्मियां दी गल ना, गर्मियां च मेरे घर एक ना परोणी थी आई हो अपने मुन्नू कन्ने बिठाई छड़ दी अपने बखे फिर जलू हां गल करा दे तालू भी बोले बिच बोलदा है मतलब सवाल करी बच्चा तो हूं मन चंचल हों बच्चे जलू कुछ गल सुननी तो सवाल बिच करी देने है ना भी गल करा देना अह अलग बच्चे कमरा दिता कहना अह अलग रहा कहने बोलिया हाड़ा बच्चा ना बोले अलग कमरे च रहा कहना दिन फिर कोई मतलब नहीं बोले अपने इन्नी खाना खाना खान भी अपने कमरे च ले जाता इतू खा कहना जालू भूख लगती आपू खाना खा पाई लाना पियो कहना आपू खाना पीना कहना डोल चुपचाप चली जाता बोला कहना अपने कमरे च रहा बोले साढ़े कोई फालतू मतलब नहीं कोई कुछ ना गलबात नहीं उसकी तो बोले तेरे बच्चे तेरे कन्ने अटैच हर गल्ला च बोलिया हर क्वेश्चन पुट कर दिया दे गल हर गल्ला च बिच कुछ बोली पो दे आदत पाई तू मतलब बच्चे बच्चे अपने तो बोले दूजे जो दूजा कमरा तेरा बोला इन्हें इन्हें कले सुब ले बच्चे फोन दे के लग रही अच्छा कितने होगा देना
0: नहीं सी बिल्कुल तीना वास्ते ही नुकसान है ना जी।
1: हाँ कहने मुझे बोला कि मैं अपने बच्चे बोला कन्या कन रखी तो मैं ये बच्चे कन्या कन रखे अज मैं कले कर दे नहीं हूं तो इन्हें बच्चे क्या खरे बुरे का पता होना
0: बिल्कुल पता नहीं होना ना जी।
1: इस टाइम मैं है ना मेरे बच्चे वाले कोई फोन नहीं है इन्हें मैं दिन दी जी मेरे मुन्नू में बैठे रहता था फिर भी मैं है ना इतना ये बैटरी नहीं आया फिर भी मैं इसे एक घंटा फोन दिन दी ज्यादा नहीं दिन दी
0: जरूरत दे अनुसार ना
1: जी। हाँ जी क्योंकि जाना भी पौंदा भाई इन्नी भी दिन भर कितने के बैठी रहना बेचारे है ना
0: जी जी
1: गप्पा मारा दे भी खेला दे भी इसने मतलब करना पौंदा कुछ ना कुछ टाइम पास तो करना पौंदा भी क्योंकि अहां टाइम चलो हो जाता पास ही ना बच्चे जिन एक जगह बैठे रहना या कोई बच्चे है ना बच्चे ने तो गल बात करना पौंदी चाहे चाहे खरे भी होने तिना ने भी तो टाइम पास करना पौंदा बच्चे ने
0: जरूर जी अज
1: ना मेरा मुन्नू ही है मैं जरा की बीमार भी है कुछ भी है इन्हें मेरे चेहरे से पता चली जाता की मम्मी ये प्रॉब्लम है कुछ की मम्मी ये क्या है कल मेरी सडनली तबीयत खराब हुई तो मुन्नू मेरे बैठे से चुपचाप नहीं मुझे तंग नहीं किया बिल्कुल भी जो पता कि मम्मी की हालत खराब है तो मैं बाहर से भी अंदर बड़ी मुश्किलों ने पजाया।

0: जी तो बच्चे समझते हर चीज, ऐसा नहीं है कहने जेडे जेडे बच्चे का अटैचमेंट है ना, बच्चे समझते कहने जिन्हें बच्चे ने अटैचमेंट होनी अपने कमरे च बैठी उठती नहीं कि पता की क्या होता क्या नहीं।
1: जी बिल्कुल जी जी
0: तो इस चीज से ना अपने आप बड़ी सोचा कि मैं बड़ा खरा करा दी है कुछ भी है तो मुझे नहीं ठीक लगी उसे गल, पर मैं नहीं बोलिया मैं चलो क्योंकि वो मेरे ते बड़ी है काफी, अगर उन्हें पता नहीं क्या सोची बोले मैं फिर इसे बोलिया मैं लिया जिन्हें तो जो ठीक लगता मैं लिया तीन तो हाँ कहना जी मैं जो ठीक लगना मैं हम तीन कर लेना कर चलो।
1: जी
0: हाँ जी मैं बोले तो हाँ जी तो हाँ हर कोई अपनी अपनी जगह मैं सही हूं
1: जी कई बार
0: मैं अपने। हाँ जी
1: तो बच्चे दिखते होने ना या हाँ भी अप डाउन कर देना जी डेली अप डाउन कर दे तो हाँ अपने आसपास भी मतलब बस ट्रैवल करते तो हाँ भी दिखते कि नहीं मतलब हर कोई मोबाइल फोन जितना
0: हाँ
1: बिजी है कि
0: जी
1: आसपास का कोई बिल्कुल पता नहीं है ना,
0: पता नहीं क्या हो रहा। हाँ
1: कई
0: जी
1: बार कनेक्टर है से बच्चे ने गला दा था बच्चे जेड़ा हेडफोन से कन्ना च फसाए तो तिना
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: पता ही नहीं
0: बिल्कुल
1: चला था तो मतलब
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: अकेलापन नहीं है ना जी।
0: तो अकेला अपन है तो और क्यों है ऐसा है फैमिली ऐसे बैठे हैं जी तो हाँ बोला दे क्वेश्चन पुट कितना कि क्या कर देता फैमिली ऐसे बैठे हो अगर फोन ना लेके बैठे हो हाँ फैमिली तो
1: जी
0: क्या फायदा हाड़
1: किसी
0: बहन
1: किसी
0: का
1: चीज का भी कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ही
0: फायदा
1: फायदा
0: कुछ
1: नहीं
0: चीजा,
1: है
0: अगर
1: जी
0: अपना हाँ सुख दुख नहीं लांगे अपनी कोई प्लानिंग नहीं कर गए या कुछ गल नहीं की फैमिली है ना तो तेरा चीजा कोई फायदा नहीं
1: जी कोई फायदा नहीं है
0: करना सही हाड़े बच्चे है जहां जो दिखी गए सही सीखा दे फिर
1: जी। ठीक
0: यहां
1: है
0: बोल रहे
1: फिर
0: बच्चे थे बिगड़ी
1: मोबाइल
0: है पर
1: जी
0: जी
1: ठीक है मोबाइल फोन दी भी लिमिट है पर उतना ही यूज़ करा जितना कि तुम्हें लगता है कि जरूरत है ना जी।
0: जी बिल्कुल अपनी
1: जी तो इंदु जी आज तुम कुंतिया गीत सुनना पसंद करके
0: मर्जी है सुनाई दे कोई नहीं जो एक गाना था याद है भाई मुझे याद नहीं होता है पूरा ना
1: जी अगर
0: एक था
1: याद
0: ना पहले पहले पुराना गाना फूल कुंगुए दास फूल था ना एक गाना याद है
1: जी जी अगर तुम जो याद आंदा है तो जरूर तो हाँ
0: अच्छा
1: मैसेज
0: हाँ
1: कर
0: मुझे
1: दियो।
0: ना अच्छा गाना पूरी तरह याद नहीं होता बस एक है बड़ा गाना है कुंगुए दा फूल है जड़ा कुछ गाना है
1: जी
0: क्या
1: कोशिश
0: सुनना
1: कर
0: था परे।
1: कोशिश कर देना
0: अच्छा
1: तुम तक पहुंचाने दी
0: जी बड़े
1: जी।
0: टाइम हो गए थे इस गाने सुने मैं लेती सहलो अंगी वहां पर मुझे याद नहीं आता मैं प्यागा दी कुलखा देती इस गाने पर नहीं याद होता
1: जी
0: ठीक
1: जरूर जी हाँ कोशिश कर दें तुम तक पहुंचाने दी
0: है जी
1: जी। धन्यवाद जी तुम्हारा जुड़ने वास्ते
0: तुम्हारा बड़े बड़े धन्यवाद जी जोड़ने वास्ते बाय
1: जी
0: बाय।
1: जी तो श्रोताओं चल देना फरमाइश दी और कने फरमाइश यहाँ पहुँचा देना मेघनाथ जी तक।
2: अपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जिनको भी हम मानते हैं जिनके भी नाम सिमरन हम सुबह उठकर करते हैं उनके चरणों में हाजिरी।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दे या भजन प्यारी दे फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़े होने न ये सफ़र तो हाँ तक रहेंदे 2 ते 3 बजे तक तो ज़रूर समय भी अपनी रफ्तार लेकर चले आए कने तो हाँ भी समय की रफ्तार कन्नै चढ़े चले होने न तो शो तो इसी कन्नै अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाते हैं श्रोता जेड़ा फरमाइश अह तक व्हाट्सएप के माध्यम ने भी पहुँचाते हैं कन्नै कॉल के माध्यम ने भी जेड़ा से अह तक फरमाइश पहुँचाते हैं। गलबात अह करा देन कि अकेलापन कन्नै आजकना जेड़ा दौर है से कुथी ना कुथी अहां जो क्या सीख दे करी जांदा है। पहले दे समय दी गल करिए तां अपनापन जिहड़ा ऐ से दिखने जो मिलता था पर अकेलापन जिहड़ा ऐ से बिल्कुल नहीं था। अकेलापन तालु ही मिलता था जल वहाँ किले होंदे थे पर इना फैमिली दे सदस्य या यार दोस्त जिहड़ा ऐ से कुथी ना कुथी अपना जिहड़ा समय ऐ से दिंदे थे उस समय दी अहां कदर करते थे। उस टाइम जिहड़ा ऐ से ना मोबाइल फोन होंदे थे ना टीवी होंदे थे होंदे भी थे तो एक दो जड़े से गांव च जरूर होंदे थे कने मिली जुली करी उस समय जड़े से यहाँ अपना समय निकालते थे कने अकेलापन बिल्कुल महसूस जड़े से नहीं होंदा था। अपने जो समय दिंदे थे रिश्तियां दी जड़ा कदर है उस जो जरूर समझते थे कि रिश्तियां जी जड़ा अहमियत है यहाँ दे जीवन च कितनी के है। हर रिश्ते दी अपनी अपनी महत जड़ा अहमियत है से जरूर है पर कुथी ना कुथी यहाँ हूँ जड़ा रिश्तियां दी अहमियत है से मोबाइल फोन तक ही सीमित जड़े से रही हो ज़्यादातर हाँ मोबाइल फोन ही अपना जड़ा समय है से दिन देना। इसी कन्ने यहाँ भी तुह तक तुह दिया जड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशा न तिना पहुँचा देना कने अगले जड़ा श्रोता ने तिना दी जेड़ा फरमाइश है तिहा जो भी तिना तक पहुँचाते न से रहने वाले न योल कैंट ते कने तिना दा नाव है अश्विनी कुमार जी तो तिना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा देन तो वह सारे भी इंजॉय करा।
1: खाने का सामान लाने गांव गया।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तो सारे एक गीत सुनिया। इस गीत ने जेड़ा बोल हैं सभी बड़े प्यारे न बाहर निकला निकवो छुकवो तो जरूर बाहर निकलना भी जरूरी है क्योंकि हाँ अपनी जेड़ा जिंदगी है से सिर्फ मोबाइल फोन तक ही सीमित जेड़ा है से करी लियो है। तो श्रोताओं कुछ गल्लां याद जड़े से अहां जो दिलांदियां न अहां अपने काम जितने ज़्यादा बिजी हैं फिर वीकेंड आंदा है तो कुछ ना कुछ अहां ये सोचते हैं न कि अपना जेड़ा वीकेंड है उस जो किस तरीके ने इंजॉय करना किस तरीके ने अहां अपनी फैमिली जो समय देन या अपने दोस्त जो समय देन। पर हर जुबान ते यही सवाल निकलता है कि अहां बिजी हैं या हल काम है तो हाँ भी जब अपने दोस्त जो फ़ोन करते हैं ना तो यही जवाब होता है ना कि यहाँ बिजी हैं। तो श्रोताओं थोड़ा दिया समय निकालना ज़रूरी है समय जड़े से हाँ वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है सभी यहाँ अपने वास्ते निकाल देन चलो अपने कुथी ना कुथी क्या बोलते चली आते हैं या क्योंकि जेड़ा प्रकृति दा रूल है आना जाना जिंदगी कालू दी है थमिया नहीं है से कोई भरोसा नहीं है जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं है तो तुहल जितना कि समय है से अपने जो समय दिया तिना कन्ने गलबात करा गलबात करना भी ज़रूरी है। मोबाइल फोन च क्या है रील स्क्रोल तो करा दे तुहां अपना जड़ा तनाव है सभी अपने ऊपर लै दे ज़्यादा रील दिखा देता सर दर्द हो दी घंटों घंटों तो हाँ रीला दिख दे रह देता जड़ा एक रील हाँ दिखना शुरू कर देना फिर हज़ारों रीला दे जड़ा न से तिना दिखना शुरू कर ही देना तो सभी कुछ ना कुछ हाँ दे स्वास्थ्य पर जड़ा नुकसान है से ज़रूर देंदे हैं या सोशल मीडिया कुछ ना कुछ नुकसान भी अहाँ जो देंदे फायदे भी बड़े न नुकसान भी बड़ा है इसी कन्ने हाँ भी फायदे वाली गल सोचनी है क्योंकि कार्यक्रम च जेड़ा समय है से थोड़ा कट रही है तो समय के अनुसार चलते हैं कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते हैं ये फरमाइश अहाँ पहुँचा देन इंदू जी तक तुहां सारी भी इंजॉय करा कन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ये गीत ये फरमाइश सुनी कने जरूर हाँ इंदु जी तक तिना दी फरमाइश पहुँचाई शायद ये गीत जड़े से सुनना चाहते होंगे जरूर हाँ कोशिश की है बाकी पता नहीं ये गीत है कि नहीं है पर हाँ कोशिश जड़े से अपनी तरफ से की है कने गलबात हाँ जिड़ा करा दिन से करा दिन अकेलापन कने अजकना जिड़ा दूर है से कुथी ना कुथी बिल्कुल दिखने च मिलता है यहाँ अपना जिड़ा समय है ज़्यादातर कुथी ना कुथी यहाँ मोबाइल फोन च दे देन दिखा हाँ समय अगर देना चाहन तो हाँ जलू खाना खान देन तभी अपनी फैमिली जो समय दे सकते पर अजकल जिड़ा सोगी खाने वाला जिड़ा हाँ बोली सकते ट्रेंड जिड़ा है इसे ख़त्म है हर कोई अपना अपना खाना पसंद करता है या फैमिली कन्ने बैठी करी यहाँ खान देना तो गप शप भी हो जाती है खाना भी हो जाता है पर खाना खा देना तो मैं मोबाइल फोन जिड़ा इसे यहाँ जरूर आंदा है हूँ तो हाँ सोचा दे उन्होंने कि एक काम तो अहाँ भी कर दे मोबाइल फोन अहाँ जालू लैन देन अहाँ खाना खा देन तो अहाँ भी मोबाइल फोन जरूर आंदा है तो जरूर तुह जो गल पिंच करा दी होनी है कने सोच विचार तुह भी जरूर करा दे होने तो सोच विचार ही नहीं करना हूँ तुह क्या करना है जलू भी खाना खाते ना तो मोबाइल फोन जो जरूर साइड रखा कने खाना आराम में खा कने अपनी फैमिली जो जिड़ा समय है से जरूर दिया

श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जो समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो समय जोड़ा से इतों ही संपन्न होता है कार्यक्रम का। तो तुह सारे ही अपनी रेडियो दो शशि दिया अनुमति।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सकें। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलूं?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम

नमस्कार श्रोताओं, तुसु सभीओ मेरा प्यार भरा नमस्ते हा। हूँ सचिन कपूर हा, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। सभी हुणने आले रा तहे दिल तो स्वागत करनो अभिनंदन करनो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच। तो सभी इस समय ट्यून कर रहा 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तक देन श्रोताओं तो है सब उम्मीद करनो सब खरे भुने राजे बाजे भुने। चलिए जी कार्यक्रम मंच सभी पहले गीत हूँ लेना। चाह तो तुम भी कुछ दे दे बल्लू कर दे कि गीत हूं लेंदे ने, लेकिन चलिए शो अगर चाह हा ना तो फिर चाह जो मकान न चींदा और चाह जो चाई होगी कि असो हूं न चींदा है ना। तो सभी भी चाह कि पहले गीत हूं लै, तो आइए आगाज कर देन कार्यक्रम रहा इस गीत सोगे।

बहुत आनंद आ गुना सभी जो गीत ढूंढने का श्रोतों तो सभी ये ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव फोनो कर देने अपने अपने वेडियो सेट मा हिंदी अपनी गप्पा आइए जी कार्यक्रम जो आगे बढ़ देने श्रोतों आज असू गल बात करने हाँ बुजुर्ग रे बारे अंदर की आखिरकार बुजुर्ग रा ख्याल की आसू आसू की करे रखना हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़ा ज्यादा जरूरी है श्रोतों की बुजुर्ग रा ख्याल किया सो है की करे रखना है ना सिर्फ तीनों त्राई टाइम मेरी रोटी देना या त्राई टाइम मेरा खाना दीना ही तैयारी सेवा नहीं है शोतो और भी बहुत चीज अगेन है सो है कर सकते हैं अपने बुजुर्ग वास्ते बशर्ते अगर करना चाहता अगर ना करना चाहता फिर क्या बोले सकते है ना और दिल मा इच्छा बुने चिंदिया सो जज्बात बुने चिंदे सो संस्कार बुने चिंदे तो सब काम किया सो बुझ गंदा टाइम ना लगो या टाइम नहीं है ये तो सिर्फ एक बहाना है शोतो समय सभी ले 24 घंटे रहे बंदा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ही नींद घर अंदर तीनिया वास्ते समय कढ़ना इंदा दायित्व और सो जरूरी भी हा चलिए दस ले जरूर लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हुन दिन पहले गीत

प्रशोतो आत्म के फिर स्वागत है सभी का गीता थो बाद बुजुर्गा रिया है गल बात लोरे था बुजुर्गा भी देखभाल करना त्यारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देना है सभी पहले था त्यारा मानसिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है त्यारा शारीरिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है और इतियो सब थो पहले इम्पोर्टेंस देना की आ सोइंदा दायित्व बनता है शतो तिन्यो सक्रिय और फिट रहने वास्ते किया सो तिन्यो प्रोत्साहित करना तिन्यो मोटिवेट करना ए इंदा फर्ज बनता है शतो नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी इंदा ही फर्ज है तिन्या बलना सो की असो रेगुलर स्वास्थ्य जांच वास्ते की असो बच्चा लेकर चल या फलाने लेकर चल ए इंदा फर्ज बनता कि तिन्यो है लेकर गान उचित पोषण दीन तिन्यो शतो सामाजिक रूप थो सक्रिय रखना और त्यारी व्यक्तिगत जागरूकता जो समझना और तिन्या मंच समझ बनाना शोतो तिन्यो अंडरस्टैंड करना ए भी सिर्फ और सिर्फ इंदा ही दायित्व है ना कि त्यारा कि सो बाल ले आंसू करना इस बाला मत बैकाशो तो फिलहाल कार्यक्रम जो है गीत

कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौके फिर सब भी होने वाले रहा तो सब मैसेज कर सकते हैं 1408887091 पर। फिलहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन हगो और बुजुर्ग रिया है गलबात लौरे थे शोधों तो चलिए थोड़ा करे और इस टॉपिक जो हगो बढ़ंदन सो बुजुर्ग सच में बहुत दिल थो आशीर्वाद दिंदे दिल थो खुश बुंदन अगर त्यार रहते है तीनों टाइम रहते है नुहाई दिंदे ने टाइम रे त्यार कपड़े धोई दिंदे टाइम रे तीनों खान पान टाइम रे तीनों अगर तुसो लगता कि बुजुर्ग के न सो थोड़ी करी एक्सरसाइज करी सकते हैं तो त्यारी एक्सरसाइज कराई करे तीनों शो तो धुप्पा बखाली करे भी कजो की धुप भी की है सो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुंदे सीजन वाइज ता इस सब चीजा का ख्याल किया सो रखना इनका दायित्व इनका कर्तव्य है महत्वपूर्ण अंग हा बुजुर्ग श्रोतो इनके परिवार शारीरिक देखभाल की कर रखने सोचो कर दिन रोजाना तीनों व्यायाम करा योग करा बुजुर्ग जो व्यायाम और योग वास्ते की सो प्रोत्साहित करा तीनों सोगी करा इवन की एक्सरसाइज है ना और तीनों फिट रहने वास्ते की सो बल्ला शोतो है ना बीमारी थो दूर सुस्ता ही रह सकते जहने एक्सरसाइज कर ले जहने सो अच्छा फल फ्रूट खा ले जहने सो शोतो पूरे तरीके हो गए किया सो योगा कर ले व्यायाम कर ले थोड़ी बहुत वॉक कर सकते सो कर ले ता सो बीमारी थो दूर रह सकते बहरहाल चल दे और कार्यक्रम में हूं देने गीत

कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हूं गिरदन तो है हिंदी अपनी गपा हक मुके फेरे बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन आ सभी हुनने आले रा सभी श्रोता गण रा और सचिन कपूर रा कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा हूं गिरदन और आज है कार्यक्रम में श्रोताओं टॉपिक लियोरा बुजुर्गारी देखभाल जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेरा बुजुर्ग वास्ते अच्छा और ताजा खाना के असो तीन खुआना चिंता है ये ना कि बात करनी रोटी बचो रही सो सेकी करी दे तेजी काम निपटाई लो कि कर खदाम लग रही और बुजुर्ग ना खंदे था ब्याकनी रोटी है या ब्याकना कुछ प्यूरा बात सब्जी तो सो सेकी करती दीता है ना बुजुर्ग वास्ते खास कर सो तो तुम्हें अपू दे कर लिया कोई सुने को तुम्हें तो डाइजेस्ट कर सकते तो है काम करू कर दे बुजुर्ग बेचारे आग जगह बेखुरे बंदे ना तो जो की तीन सारी उम्र तक मेहनत कर रहे बंदे सो तो अच्छा खान पीन दीना के असो इनका दायित्व बनता है प्रोटीन युक्त संतुलित आहार तीनो दिन छोतो और फास्ट फूड तो वैसे बुजुर्ग इन देरदे ने और तुसु भी लात न लवानी बुजुर्गो है ना कई सियाणे इन दे बोलदे कि आ ले इन दे है त खाई लंदे ने है त ना खाना फास्ट फूड बिल्कुल ना खाना और प्रदूषण तो बचे करे रहना ज्यादा प्रदूषित जगह के असो बुजुर्ग जो ना लेकर जाना छोतो स्वास्थ्य जांच के असो नियमित रूप थो डॉक्टर थो स्वास्थ्य जांच करवाओ करा छोतो उचित समय में के असो तीनो दवाई किया सो दिच्छु करा और रेगुलर रूटीन चेकअप किया सो बुजुर्ग रख रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहरहाल चल दिन थोड़ा करी और हम और तो है हुनु कर दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा आरचे सचिन कपूर सोगी

सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर रातुंद अपना आरजे वेड़ी जो कि हया कार्यक्रम जो हगो ब्रंदन छोतो और मानसिक और सामाजिक देखभाल रे बारे में गल बात कर लेंदे ने सक्रिय जीवन छोतो तिन्या सक्रिय और व्यस्त रहने वास्ते की आज सो प्रोत्साहित करना है ना कहो कि ये मानसिक स्वास्थ्य जो कि आ सो बढ़ावा दिंदा हा अगर सो बुजुर्ग इंदा व्यस्त रहेंदे जो सो काम कर सकते न मतलब है ना तिया सो अगर काम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी गलत यारा मानसिक स्वास्थ्य के इतों ठीक रहता है सोतो शरीर भी किया सो थोड़ा बहुत फिट रहता है। सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते अकेलापन जो काम करना है बुजुर्ग रे भावनात्मक भलाई वे वास्ते के तिन्यो परिवार और दोस्त हो गए की ऐसा जोड़ी करी रखना है। कोई सियाणा के इनके घर है सोतो सो अगर तुसो लगता की अकेला फील करू करदा तो तस्यो अपू हो के जोड़ी करी रखा या फिर आस पड़ोस में कोई और सियाणे इनते तिन्यो आपस में किया गलबात तैयारी भुआ ऐसा गल्ला रे खास ख्याल रखना अगर सो ना गलबात करने लायक ही या ना ही ने गाने लाइक ने तो है किया सो अपने बुजुर्ग हो गए लगातार संपर्क में रहे तीनो अकेलापन किया सो फील मत कराश हो तो कार्यक्रम जो थोड़ी करी और हगो बढ़ेंदेन और हुंदे ने प्यारे दे गीत।

शतु बहुत मजे चुकड़ता गीता हुने वा, लेकिन जो आज का टॉपिक है वे बहुत मजेदार है। मेवे ता दिल हो कि लगुरा ये टॉपिक है शतु वाके मैं कजो कि जो बुजुर्ग सो इनकी पहचान है। शतु बुजुर्ग वास्ते मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है ना, मानसिक शांति की है शतु सो भी बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते। सो अपने मन री शांति होगी के न सो रहन इट्स सो इम्पोर्टेंट है ना। घर अंदर काला कलेश के सो ना भूना चाहते हैं, अपू मियाँ बीबी भी लड़ाई है तो सो इन बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं, या बच्चे भी लड़ाई है तो सो बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं। तीनों जितना हो सकता तू ना मानसिक स्वास्थ्य के सो त्यारा ठीक रहे तीनों या एर और रिटेंशन आ गया न सोना भून सो तो है गल्ला रा विशेष ध्यान किया सो जरूर रखना तो है सब। आइए कार्यक्रम जो होगा बढ़ंदन और कार्यक्रम में लेकर चल दें तो सब बीजो इस प्यारे देगी तारी किनारी।

शुदा आइया कार्यक्रम इस समय तो हुनु करदे ने सचिन कपूर सोगी इंदी अपनी गप्पा ते शुदा अपने घर में बुजुर्ग की देखभाल जरूर करन है ना। घर में बुजुर्ग की देखभाल करदे ने अगर तो है शुदा तो सब घर घर ना मंदिर बनी सकता है और मंदिर बनी गंदा है जाने तो बुजुर्ग की देखभाल करदे ने और तीनो बढ़िया तरीके हो गई सो रख दे इन शुदा है ना जी। इनके बुजुर्ग जो कि सो समय समय में मैं दसो दुआ दिया चिकित्सा देखभाल रा प्रबंधन त्यारा करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पौष्टिक भोजन प्रदान तिन्यों करा श्रोता हूँ। शारीरिक गतिविधि जो वास्ते तिन्यों प्रोत्साहित करा श्रोता हूँ है ना। संगीत तिन्यों होना अगर तिन्यों पसंद आता संगीत तिन्यों होना है ना। नचना की है सो तिन्यों बल्ला की अमा दो पराठी लाई लेंदे या बाबा दो पराठी के ना सो लाई लेंदे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। घर मन जो बुजुर्ग रहे गर्दन त्यारी देखभाल की सो करना बहुत इम्पोर्टेंट है असु सभी वास्ते श्रोता हूँ। तो श्रोता अभी आऊँ सचिन कपूर ले लेना तो तो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहूँ जो हमेशा बोलूँ कि बुजुर्गारी सेवा करते रहे और आज का टॉपिक भी था इसी पर है और आज का ये मेरा कार्यक्रम की असु इंदे बुजुर्ग पर हाश होता हूँ। इंदे बुजुर्ग जो समर्पित है प्यारा दे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा आरजे सचिन कपूर री तरफ था और रेडियो गुंजन री तरफ था। सो प्लीज टेक केयर अपने बुजुर्गारी की सो ख्याल रखा टेक केयर करा बुजुर्गारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ना सुवास्थ है इं था श्रोता हूँ। घर किया सो घर ना मंदिर बनी गंदा अगर बुजुर्गारी सेवा है तस तरीके होगी और मन चित लाई करी कर दे हिंता इन शब्द था लेकिन इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन पंकज पंडित के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में बारिश बनी महिला क्रिकेट मैच में बाधा, भारत ऑस्ट्रेलिया की महिला मैच मोहाली शिफ्ट। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के बाद ही ग्राउंड में प्रवेश। 734 पदों के लिए 98,719 युवाओं ने किया आवेदन। सतलुज और चिनाब नदी से रेत बजरी निकालने पर परियोजना कंपनियों को रोक। सरकार ने नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाई एरिया में इंसेंटिव जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने होम स्टे और कैंपिंग सुविधाओं पर दिया जोर। विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा एरियर। क्लास 3 कर्मचारियों को 30% और क्लास 1 व 2 को 15% बकाया देने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच प्रस्तावित मैच अब मोहाली में खेला जाएगा। लगातार बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड प्रभावित हुई, जिसके चलते मैच के आयोजन को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही। बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक ने धर्मशाला की आउटफील्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद मैच को मोहाली स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि धर्मशाला में लंबे समय तक हुई बारिश से आउटफील्ड को नुकसान पहुंचा है। मैदान को मैच के लिए पूरी तरह तैयार करना चुनौती बन गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित टेस्ट मैच को खराब आउटफील्ड के कारण धर्मशाला से इंदौर स्थानांतरित किया गया था। अब प्रस्तावित मुकाबला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुबह 9:30 बजे से मोहाली में खेले जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर से 98,719 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 491 और महिला कांस्टेबल के 243 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी। ग्राउंड टेस्ट स्थल पर सबसे पहले अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि की जाएगी, इसके बाद उसकी फिंगरप्रिंट के साथ डिजिटल फोटो ली जाएगी। आवेदन के रिकॉर्ड से इसका मिलान किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तकनीकी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थी की पहचान से जुड़े रिकॉर्ड को भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है कि अक्टूबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करने की तैयारी है। ग्राउंड टेस्ट में पुलिस लाइन और पुलिस ग्राउंड शामिल किए गए हैं और अभ्यर्थियों को निर्धारित दिन तथा रिपोर्टिंग समय के अनुसार बुलाया जाएगा। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के नाम पर नदियों से रेत बजरी निकालने के मामले में सरकार ने कहा है कि परियोजना कंपनियां अपनी मर्जी से नदी से रेत बजरी नहीं निकाल सकेंगी। सतलुज और चिनाब नदी बेसिन में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं और निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी मात्रा में रेत बजरी की आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के अधिकार अलग हैं, जबकि नदी से रेत बजरी निकालने की अनुमति अलग प्रक्रिया के तहत होगी। इसके लिए सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। यदि कोई परियोजना कंपनी बिना नीलामी प्रक्रिया के नदी से रेत बजरी निकालती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा में भी नदियों से निकलने वाली खनन सामग्री और उसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे को सब्सिडी और कंक्रीट निर्माण से बचने के लिए कैंपिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने के साथ लोगों को प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने शिमला और सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को और प्रभावी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालयों के पास जमीन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यदि पौधे बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं तो व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। नशे की समस्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि नशे में संलिप्त लोगों की संख्या कुल आबादी का एक हिस्सा है, जबकि बड़ी आबादी को नशे से बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान बताया कि प्रदेश में विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पात्र बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना के लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर ज्वाइंट फंड के साथ बैठक के दौरान कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन एरियर का 30%, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारियों को उनके पेंशन एरियर का 15% भुगतान अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है और उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। वहीं अधिसूचना के अनुसार पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रिया के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल का अलर्ट है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इन 3 दिनों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस बार बैंक ग्राहकों की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि 26 सितंबर शनिवार और 27 सितंबर रविवार को भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के कारण लगातार 5 दिनों तक बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की प्रत्यक्ष मदद वाले कार्य इन माध्यमों से नहीं हो पाएंगे। यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, पेंशन से जुड़े मुद्दे, महंगाई भत्ते में समानता और नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल हैं। गगल एयरपोर्ट के विस्तार में मांझी खड्ड के पानी को नियंत्रित करने के लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया गया है। योजना के तहत बरसात के दौरान खड्ड में आने वाले अनियंत्रित जल प्रवाह को रोकने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएगी। मांझी खड्ड से लेकर इच्छी तक एक यू शेप चैनल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट क्षेत्र को बाढ़ और जल भराव के खतरे से बचाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत रनवे की ऊंचाई को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के बजाय जल प्रवाह को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए भी ये परियोजना उपयोगी बताई गई है। मांझी खड्ड में पानी का दबाव कम होने से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। परियोजना के तहत डायवर्जन प्लान को केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।
1: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने।

नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

मैं सचिन कपूर हूँ और कार्यक्रम में गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूँ। ये सिलसिला, ये गीतों का पिटारा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

गीतों की माला यूं ही पिरोते रहिए, गीतों की माला यूं ही संजोते रहिए। हम आपके साथ हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में, और धर्मशाला से बिल्कुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, और कार्यक्रम में गीतों का आनंद यूं ही लेते रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब,

0: हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
5: उठाओ उठाओ, ठीक है, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलूं?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तो।

नमस्कार श्रोतों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम 8 बजे तक जो है वो बिल्कुल लाइव चलेगा श्रोतों, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक बहुत सी जानकारियां पहुंचाएंगे, साथ ही साथ गीत संगीत जो है वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोतों। मेरा नाम है सचिन कपूर और गुड इवनिंग धर्मशाला को मैं इस समय होस्ट कर रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि अनेकों जानकारियाँ जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले धर्मशाला की मौसम की जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इस समय की बात की जाए श्रोतों तो क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो है वो गर्मी ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर में बिल्कुल जो वृद्धि है वो ज़रूर हुई है, जो बढ़ोतरी है तापमान में श्रोतों वो ज़रूर हुई है। तो अधिकतम मैं बात करूँ तो 31 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान जा रहा है, और न्यूनतम की बात की जाए क्योंकि शाम के समय जो शाम है वो ठंडी शाम है श्रोतों, तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रह रहा है मौसम। तो इस समय की बात की जाए तो लगभग श्रोतों धर्मशाला में आज मौसम जो है वो साफ रहा, पूरा दिन सुहावना रहा और तापमान लगभग 25 डिग्री से 31 डिग्री के बीच जो है वो रहा श्रोतों। रात के समय जो है वो 16 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान आ जाएगा श्रोतों। धूप खिली हुई रही श्रोतों, और लगभग नमी की बात की जाए जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है तो लगभग 53% से 55% तक जो है वो रही। और बात की जाए हल्की गति से हवा की मैं बात कर रहा हूँ श्रोतों, हवा हल्की गति से लगभग 7 से 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चली श्रोतों। तो आइए, यह है धर्मशाला का मौसम जो हमने आप तक पहुंचाया श्रोतों। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज़ ज़रूर करते हैं श्रोतों कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहेगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ और आरजे सचिन कपूर के साथ।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। आइए अब आपको लेके चलते हैं आज के विचार की ओर। शोधो कहते हैं, कर्म देर से आता है लेकिन अपना हिसाब कभी नहीं भूलता और आता ज़रूर है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं श्रोताओं, जो भी आप बुन रहे हैं वो आप तक वापस ज़रूर आएंगे। वो आप किस तरह का पौधा जो है वो लगा रहे हैं, आप किस तरह की पैदावार जो है फसल वो उगा रहे हैं अपने कर्मों के माध्यम से, तो वो वापस जो है वो ज़रूर लौटेंगे और वो ज़रूर आपको फल देंगे। फिर फल आपने वो पौधा किस प्रकार का लगाया है, वो फल आपने किस प्रकार के बीजे हुए हैं, वो कर्म आपने किस प्रकार के किए हैं, वो आप पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हैं या फिर बुरे कर्म हैं। और इस कलयुगी दुनिया में श्रोतम बुरे कर्म करना तो एक मतलब बाएं हाथ का खेल जो है वो लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छे कर्म हम अपने हाथों से जो है वो अच्छे कर्म हम ज़रूर कराएं, है ना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं कहते हैं ना कि हर नया दिन जो है वो एक नए अवसर की तरह है। श्रोताओं अपनी सोच को सकारात्मक रख कर दिन की शुरुआत करें। हर एक नया दिन एक नए अवसर की तरह होता है श्रोतों, तो हमेशा अपने सोच को जो है वो सकारात्मक रखें और दिन की शुरुआत जो है वो ज़रूर बेहतरीन तरीके से करें। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों और लेकर चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर। और फिर श्रोतों गीत के बाद आप सभी को कुछ एक ताज़ा जानकारियों के साथ रूबरू करवाएंगे।

बहुत प्यारा सा गीत श्रोता वहाँ पर सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। तो स्वागत है पुनः आप सभी का। आइए जी, कुछ एक खास जानकारियों के साथ जो है वो आप सभी को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं, और कुछ एक खास जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। धर्मशाला में बॉर्डर धर्मशाला पुलिस थाना के सेल में शतों एक कैदी ने ड्यूटी पर तैनात लाला लाजपत राय जेल के बॉर्डर के साथ मारपीट करते हुए बॉर्डर नहीं माफ करे वार्डर वहीं के जो तैनात थे सिपाही उनके साथ मारपीट करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को जो है श्रोताओं वो अदालत में पेश किया गया है। जानकारी के अनुसार थाना के सेल में ड्यूटी के दौरान किसी बात को लेकर कैदी और सिपाही के बीच जो है वो कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान कैदी ने जो है वो साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपी जसवाल ने श्रोताओं बताया कि जेल में कैदी की ओर से वार्डर के साथ मारपीट करने की शिकायत मिली है। आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। श्रोताओं धर्मशाला जेल में इससे पहले भी अगस्त माह में जो है वो इस तरह के कुछ एक वाक्य जो है वो सामने आए थे लड़ाई झगड़े के श्रोताओं, है ना जी। तो चलिए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहेगा वेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ, और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

चौदह एफएम बैंड 91.2 दो मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, कांगड़ा ज़िला में राशन जो है वो अब ज़रूर बटेगा और बटेगा थोड़ा और स्मार्ट तरीके से। वो कैसे, आइए पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। सरकारी राशन डिपो में सर्वर डाउन या नेटवर्क ना होने के कारण लंबी लाइनों में लगने की मजबूरी अब बीते दिनों की बात होने लगी है। श्रोतों, कांगड़ा ज़िला के उपभोक्ता अगले महीने से स्मार्ट राशन का अनुभव करेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग ने जिला भर में राशन वितरण को पूरी तरह से हाईटेक और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत सभी डिपुओं में चार्जी तकनीकी से जो है वो लेस नेई मशीनें स्थापित की जा रही हैं श्रोताओं, जिससे उपभोक्ता को बिना किसी तकनीकी रुकावट के चंद मिनटों में राशन मिल सकेगा। पुरानी मशीनों में अक्सर सिग्नल गायब होने से उपभोक्ता और डिपो संचालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन नई मशीनें इस समस्या का अचूक इलाज है श्रोताओं। ये नई ई पोस मशीन जो है श्रोताओं सीधे 4G नेटवर्क पर काम करेगी, जिनमें सिम कार्ड लगाने की विशेष सुविधा है। सबसे बड़ी खासियत ये है श्रोताओं कि इन मशीनों में राशन का वजन मापने की सुविधा भी जो है वो इनबिल्ट यानी एकीकृत होगी। राशन की कालाबाजारी रोकने और सही व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए जो है वो इसमें चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्नाइजेशन, उंगलियों के निशान, बायोमेट्रिक और ओटीपी आधारित तिस्त्रीय पहचान जो है वो व्यवस्था दी गई है। श्रोतों, ज़िला के सभी 1600 डिपुओं को इस नई तकनीक से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इस महीने के अंत तक सभी मशीनें जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी श्रोतों। इससे हाईटेक को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिपो संचालकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है श्रोतों। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोतों। तो अब यानी कि आप हाईटेक तरीके से जो है वो राशन ले सकेंगे श्रोतों, और स्मार्ट तरीके से आप राशन ले सकेंगे, और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आप राशन जो है वो ले सकेंगे। बहरहाल आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपना विड़िगुंजन धर्मशाला जो है वो ट्यून किया है, और मैं हूँ सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के इस जानकारी की ओर। नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस ज़िला देहरा को बड़ी सफलता मिली है। श्रोतों, पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 8.220 ग्राम चिट्टा बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में पुलिस थाना देहरा ने जो है वो करियाड़ा निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से जो है श्रोतों वो 5.150 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं पुलिस थाना मोइनी में मामला दर्ज कर राहुल कुमार और कमलप्रीत सिंह निवासी जगारू लुधियाना को गिरफ्तार किया गया। श्रोतों, इनके कब्जे से 3.07 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। श्रोतों, पुलिस ज़िला देहरा के एसपी संदीप धवल्ला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की पुलिस को नशे के खिलाफ सहयोग करे। और बिल्कुल श्रोतों, खाली हिमाचल पुलिस जो है, चाहे वो कहीं की भी पुलिस की ना हो, धर्मशाला की हो, चाहे वो फिर देहरा की हो, कांगड़ा की हो, ज्वाली की हो, कहीं की भी क्यों ना हो, अकेली पुलिस या सरकार जो है वो ये नशा जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती है। श्रोतों, इसमें आम लोगों का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और आवश्यकता है आम लोगों की। आपको कहीं भी लगता है, कहीं भी दिख जाता है कि इस प्रकार से अगर कहीं सूखा नशा जो है वो किया जा रहा है, तो आप कृपा करके जो है वो नज़दीकी थाने में संपर्क ज़रूर करें और लोगों को जो है वो जागरूक ज़रूर करें। श्रोतों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी जो है वो ये चीज़ इस समय बनी हुई है। श्रोतों, कि आप लोगों तक जो है, आप प्रशासन तक जो है, पुलिस तक जो है वो जानकारी ज़रूर प्रदान करें कि कौन युवा या कौन व्यक्ति जो है वो कहाँ से कहाँ चिट्टा ले रहा है, लेकर जा रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है, कहाँ इनका ग्रोह जो है वो बना हुआ है। तो ये सचेत और ये जागरूक होना हम सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। श्रोतों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को जानकारियों का सिलसिला, यूं ही चलता रहेगा। अब इस गीत से रूबरू करवाते हैं आपको, मिलाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये फील करने की बात होती है, मिलना अपने आप बन जाता है। श्रोतों, आँख बंद कीजिए और सोचिए हमारे सामने ये गीत खड़ा हुआ है और इसको आप फील कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं इसके साथ।

बहुत प्यारा से ये गीत है श्रोतो, आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, कितनी बेचैन होकर मैं तुमसे मिली। ये इश्क मोहब्बत है, प्यार की बातें हैं श्रोतो, और हम इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस दौर से कार्यक्रम को भी हम आगे लेके जाएंगे श्रोतो, क्योंकि कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं है आसा, मौत का दरिया है, और नहीं माफ़ करें, ये इश्क नहीं है आसा, आग का दरिया है डूब के जाना है, या मौत का दरिया है डूब के जाना है, जो भी है वट एवर, लेकिन डूबना ज़रूर है। फिलहाल हम डूबेंगे नहीं, हम आपको आगे लेके चलेंगे श्रोताओं, और ऑनलाइन निवेश के झांसे में जो है वो पालमपुर ने 1.23 करोड़ रुपए एक अधिकारी ने गवाए हैं। एक ऑफिसर लेवल का आदमी, ऑफिसर लेवल का अधिकारी, मतलब एक माफ़ करें अधिकारी, एक अधिकारी इस प्रकार की गलती कैसे कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। ऑनलाइन निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर ज़िला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के एक आर्मी से रिटायर थे अधिकारी श्रोतों, साइबर ठगी द्वारा 1.23 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। छात्रों ने फेसबुक के जरिए पीड़ित को निवेश से जुड़े एक कथित मंच से जोड़ा श्रोतों। इसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क बढ़ाकर अलग अलग खातों में रकम जमा करवाई गई। पीड़ित ने करीब 1.5 महीने से 70 अलग अलग लेन देन के माध्यम से 1,23,25,000 रुपये गवा दिए। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रदेश के एक सरकारी विभाग से जो है वो रिटायर थे श्रोतों, सेवानिवृत्त हुए थे। ठगी का सिलसिला 1 अगस्त से सितंबर के मध्य तक चला श्रोतों। शातिरों ने शुरुआत में निवेश पर रिटर्न भी दिया, इससे पीड़ित का भरोसा बढ़ गया और अधिक मुनाफे की उम्मीद में उन्होंने रिटर्न समेत अपनी रकम दोबारा कथित निवेश मंच पर लगानी शुरू कर दी। इसके बाद अलग अलग बहानों से जो है उनसे लगातार धनराशि जमा करवाई गई। पीड़ित ने करीब 1.5 महीने में 70 अलग अलग लेन देन किए श्रोतों, इनमें एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई श्रोतों, जबकि कई बार 8, 7, 5 और 1 लाख रुपए तक अलग अलग बैंक खातों में जमा करवाए गए। लगातार रकम मंगवाने और निवेश से पैसा वापस नहीं मिलने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 1318 4 1319 2 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया। साइबर थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी और जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई उनके साथ ऑनलाइन संपर्क और लेन देन की जानकारी खंगाली जा रही है श्रोतों। तो आप सभी से भी ये हमारी विनती है कि देखिए इस प्रकार के झांसे में जो है वो बिल्कुल ना आए। हम हर बार जो है वो आप सभी को कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोता जो है वो जागरूक रहे। 1.23 करोड़ रुपए को डबल करने के चक्कर में जो थे वो भी गए, है ना। देखिए डबल के चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट के चक्कर में जो है मत पड़िए। आपने इतनी मेहनत से आप एक सरकारी मुलाजिम थे, बहुत मेहनत से आपने ये पैसा जो है वो एक इकट्ठा जो है वो किया होगा, है ना, और उसके बाद जो है वो इस प्रकार से आपके साथ हुआ। ये तो कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं कि 70%
70 से भी ज़्यादा, 80%, 80 या 90% मैं कहूँगा कि गलती आपकी है, क्योंकि हम इस चीज़ से सभी वाकिफ़ हैं कि ये शातिर जो है वो इस प्रकार से करते रहते हैं, दुगने पैसे का झांसा देकर जो है जो पैसे आपके होते हैं वो भी ले जाते हैं, है ना। जब निवेश किया पैसा निकालने में आने लगी अड़चन तो ठनका दिमाग, तो उस समय तो देर हो चुकी थी श्रोतों। तो फिलहाल जो है वो मामला जो है वो साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2) और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम की धारा जो है वो लगी है, लेकिन केस दर्ज तो हो चुका है श्रोतों। अब देखते हैं पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा, आप सभी बने रहिए।

श्रोतों, ये है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला और श्रोतों, आपसे ठीक 2 मिनट बाद यानी कि ठीक 7 बजे जो है वो आप सुनेंगे समाचार वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ यूं ही।

0: गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ उठिए, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों?

0: कृष्ण बोले क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सकें। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे पर...
1: कुछ मीठा बोलूं?
2: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
1: मैं खाने की बात कर रही थी।
2: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
1: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
3: क्या

श्रोतो, अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो, जो कि सचिन कपूर। आई श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। प्रदेश में परिवहन नियमों की अवहेलना कर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर जो है वो परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इस वर्ष 2026-27 के तहत जून जुलाई तक की 238 वाहनों की ब्लैकलिस्ट 238 वाहनों को ब्लैकलिस्ट जो है वो किया जा चुका है। इनमें निजी वोल्वो बसों के साथ अन्य यात्री और निजी वाहन भी शामिल हैं। इन वाहनों पर लाखों रुपए के चालान जो है वो किए गए हैं। श्रोतों, निर्धारित समय में चालान का भुगतान नहीं करने पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने वाहन मालिकों को डिफॉल्टर घोषित करते हुए ये कार्रवाई की है। श्रोतों, परिवहन विभाग के उत्तर क्षेत्र धर्मशाला मंडल के तहत कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। श्रोतों, इससे पहले वर्ष 2025-26 में 2025-26 में जो है वो लगभग 900 से अधिक चालानों के आधार पर 562 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। वहीं मौजूदा वर्ष में जून जुलाई तक 238 वाहन ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं। इनमें निजी वॉल्वो बसों के खिलाफ परमिट नहीं होने, राज्य कर का भुगतान नहीं करने, यात्री सूची नहीं रखने और अनुवादित वाहन होने के बावजूद रास्ते में सवारियां उठाने, बिना बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने और अन्य नियमों की अवहेलना मामले में चलान जो हैं वो श्रोतों किए गए हैं। एक बार फिर से मैं पुनः दोहराता हूं कि किस किस बात के जो हैं वो 238 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं। अगर आपका भी चालान पेंडिंग है तो ज़रूर कीजिए। श्रोताओं, 238 वाहन ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं। इनमें जो निजी वोल्वो बसों के खिलाफ परमिट नहीं होने, अवैध कर का भुगतान नहीं करने, यात्री सूची नहीं रखने, अनुवादित वाहन होने के बावजूद रास्ते से सवारियां उठाने, बिना बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले और अन्य नियमों की अवहेलना करने वाले, इन सभी की गाड़ियां जो हैं वो परिवहन नियमों की अवहेलना कर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर जो है वो परिवहन हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा हुआ है। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। श्रोतों, आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से गीत के बाद। और इस प्यारे से गीत के बाद श्रोतो आपको लेके चलते हैं मौसम की खास जानकारी की ओर, क्योंकि मौसम जो है वो श्रोतो इतने दिनों में जो है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन कर भी रहा है। और अब हम सोच रहे हैं कि क्योंकि श्रोतो बरसात चली गई है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि अब बरसात चली गई है तो अब जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया हो जाएं, सारी चीज़ें जो हैं वो लेवल में आ जाएं, है ना। इस प्रकार की सोच जो है वो हम सभी ज़रूर रख रहे होंगे, लेकिन क्या है असली नेचर इस समय श्रोतों, वो जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम सचिन कपूर है और आप सभी सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं इस समय, उन सभी का मैं पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये नाचीज सचिन कपूर आपका पुनः स्वागत करता है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोतों कार्यक्रम में अगली जानकारी आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, लेकिन उसी बीच पे एक लाइन याद आई है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कहते हैं कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। अगर आपकी लाइफ में भी कभी आपको लगता है कि बहुत सी परेशानियां जो हैं वो आपके बीच आ चुकी हैं, बहुत सी परेशानियों से जो हैं वो आप घिर चुके हैं, आपको घेरा गया है, तो इस लाइन को ज़रूर याद कीजिएगा कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों

0: मौसम के मौजूदा रुझान मानसून के कमज़ोर पड़ने के संकेत दे रहा है श्रोतों। हालांकि पिछले कल 21 सितंबर को भी जो है वो प्रदेश में बिल्कुल सही मौसम जो है वो रहा, धूप वाला मौसम जो है वो रहा श्रोतों, और अधिकारी विदाई की घोषणा जो है वो नहीं हुई है अभी। लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अगर बात की जाए तो 27 सितंबर तक प्रदेश के लिए किसी चेतावनी का कोई भी चेतावनी जो है वो 27 सितंबर तक नहीं है श्रोतों। और बताना चाहूँगा आप सभी को कि मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक मानसून विदा ले सकती है श्रोतों, और अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है श्रोतों। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर जो है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हिमपात भी हो रहा है, लेकिन 25 सितंबर तक मानसून जो है अब वो पूरी तरह से विदा ले लेगा। तो इस मानसून के दौर में जो है वो काफ़ी श्रोतों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, बहुत से घरों के चिराग जो हैं वो बुझे भी हैं श्रोतों, और जिस घर का व्यक्ति जो है वो जाता है श्रोतों, दुख दर्द उस घर के लोग जो है वो ही समझ पाते हैं। तो चलिए, फिलहाल 25 सितंबर तक मानसून विदा ले लेगा, ऐसी जानकारी जो है वो मौसम विभाग द्वारा जो है वो दी गई है, और हम आप तक पहुंचाने की ये जानकारी कोशिश कर रहे हैं। मैं नाचीज सचिन कपूर आपके साथ इस समय बना हुआ हूँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को
1: तेरे दिल में हम आ गए
0: तो तेरे दिल में ही रहेंगे तो
1: तेरे दिल में रहेंगे तो
0: तुझे अपना कहेंगे
1: तुझे अपना कहेंगे।
0: अब झूठा झूठा चलिए आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोता बहुत प्यारे से गीत आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। और आइए, वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटी सी अंतराल का। श्रोताओं,

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
4: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलूं?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: किताब घर स्थानीय लेखकों को पाठक वर्ग से जोड़ने और प्रदेश में पठन संस्कृति को नई ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में शिमला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में किताब घर संचालित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किताब घरों को केवल पुस्तक बिक्री केंद्र तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इन्हें साहित्यिक संवाद, पठन पाठन और सांस्कृतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत के साथ आगे बढ़ रही है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हर जगह तालाबंदी नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी विकास कार्य ठप है और हर तरफ अराजकता व बदहाली का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूर्व भाजपा सरकार द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थी और राज्य सरकार को केवल 30 करोड़ रुपए जमा करने हैं जिसे वो जमा नहीं कर रही है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाने के आह्वान के बारे में। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें, खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती माँ को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। रक्षा मंत्रालय ने 11 सड़क परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है जिनमें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें चंबा किलाड़, खानागुंती, लामखागा दर्रा, हरसिल और वांगतू मुड अट्टरगू सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता 2 की सूची में शामिल है। हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक परियोजना का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन परियोजनाओं के विकास व रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जाएगी। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चंबा जिला के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात है। हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा किलाड़ मार्ग चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। हर्ष महाजन ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का आभार जताया है। कुल्लू जिला में आनी उपमंडल के हरिपुर नागन क्षेत्र में आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। घायल को उपचार के लिए रामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी व्यक्ति बड़ागांव से एक विवाह समारोह से वापस घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान जाबोगांव के राहुल राणा, बालकृष्ण, विकास और गुंजन के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया और मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सिरमौर जिला में नाहन शहर के वार्ड नंबर 5 में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नाहन शहर के 3 प्रमुख स्टोरेज टैंकों का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है। राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत चल रहे इस कार्य को मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
6: हमारे 3 टैंक थे, यहाँ वर्किंग स्पेस बहुत मिनिमम थी, में काफी लीकेज है, टैंकों को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके साथ जो नई पाइपलाइन है वो भी बिछने जा रही है। ये अमृत के माध्यम से जो हमें पैसे मिले थे नॉन वाटर सप्लाई के, इसके तहत हम एक वार्ड को मॉडर्नाइज करेंगे। इस वार्ड को हम IoT के, अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ेंगे। पायलट बेसिस पे होगा, अगर हमें वहां सक्सेस मिलती है बाकी वार्ड्स में भी हम इसको लेके जाएंगे।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से ही एक बेहतर, सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण संभव है। बिलासपुर जिला की PM श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में आयोजित विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। धर्माणी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनकी सीखने की प्रक्रिया को समझने सहित उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना है। राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन का सकारात्मक उपयोग कर इसे ज्ञानवर्धन, अधिगम और आत्मविकास का माध्यम बनाने का आह्वान भी किया। भारत विकास परिषद द्वारा नाहन में भारत को जानो कार्यक्रम के तहत समूहगान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के नाहन शाखा के अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और देश की समृद्ध विरासत से परिचित करवाना रहा। यशपाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है।
7: भारत को जानो के संदर्भ में हिंदी समूह गान प्रतियोगिता, संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया है। ये भारत को जानो कि हमारे भारत वर्ष की क्या संस्कृति है, क्या सामाजिक स्तर में हम अपने हिंदी भाषा को कैसे आगे करें, हर वर्ष आयोजन कराते रहेंगे ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हवाई संपर्क व विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित, राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा किताबघरों से प्रदेश के रचनाकारों को मिलेगा व्यापक पाठक वर्ग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत से आगे बढ़ रही है सुक्खू सरकार। चंबा किलाड़ मार्ग को रक्षा मंत्रालय से मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा, निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र के अधीन और कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, एक घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।

शोधो कार्यक्रम आप सभी ने गुड इवनिंग धर्मशाला सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं सचिन कपूर हूँ। तो श्रोतों अब आरजे सचिन कपूर को भी दीजिए आप इजाज़त और जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी प्रकृति का ख्याल ज़रूर रखें, माँ बाप की सेवा ज़रूर करें और हाँ मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में श्रोतों, उन मुश्किलों से लड़ना जो है वो ज़रूर सीखिए। इंसान लड़ता है और फिर सीखता भी है। तो रखिए अपना सभी ख्याल, आपसे ज़्यादा कीमती, आपसे ज़्यादा बहुमूल्य इस दुनिया में और कोई नहीं है। नमस्ते धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हैं। हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलूं?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
10: क्या?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन पंकज पंडित के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में बारिश बनी महिला क्रिकेट मैच में बाधा, भारत ऑस्ट्रेलिया की महिला मैच मोहाली शिफ्ट। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के बाद ही ग्राउंड में प्रवेश। 734 पदों के लिए 98,719 युवाओं ने किया आवेदन। सतलुज और चिनाब नदी से रेत बजरी निकालने पर परियोजना कंपनियों को रोक। सरकार ने नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाई एरिया में इंसेंटिव जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने होम स्टे और कैंपिंग सुविधाओं पर दिया जोर। विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा एरियर। क्लास 3 कर्मचारियों को 30% और क्लास 1 व 2 को 15% बकाया देने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच प्रस्तावित मैच अब मोहाली में खेला जाएगा। लगातार बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड प्रभावित हुई, जिसके चलते मैच के आयोजन को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही। बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक ने धर्मशाला की आउटफील्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद मैच को मोहाली स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि धर्मशाला में लंबे समय तक हुई बारिश से आउटफील्ड को नुकसान पहुंचा है। मैदान को मैच के लिए पूरी तरह तैयार करना चुनौती बन गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित टेस्ट मैच को खराब आउटफील्ड के कारण धर्मशाला से इंदौर स्थानांतरित किया गया था। अब प्रस्तावित मुकाबला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुबह 9:30 बजे से मोहाली में खेले जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर से 98,719 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 491 और महिला कांस्टेबल के 243 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी। ग्राउंड टेस्ट स्थल पर सबसे पहले अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद उसकी फिंगरप्रिंट के साथ डिजिटल फोटो ली जाएगी। आवेदन के रिकॉर्ड से इसका मिलान किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तकनीकी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थी की पहचान से जुड़े रिकॉर्ड को भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है कि अक्टूबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करने की तैयारी है। ग्राउंड टेस्ट में पुलिस लाइन और पुलिस ग्राउंड शामिल किए गए हैं और अभ्यर्थियों को निर्धारित दिन तथा रिपोर्टिंग समय के अनुसार बुलाया जाएगा। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के नाम पर नदियों से रेत बजरी निकालने के मामले में सरकार ने कहा है कि परियोजना कंपनियां अपनी मर्जी से नदी से रेत बजरी नहीं निकाल सकेंगी। सतलुज और चिनाब नदी बेसिन में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं और निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी मात्रा में रेत बजरी की आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के अधिकार अलग हैं, जबकि नदी से रेत बजरी निकालने की अनुमति अलग प्रक्रिया के तहत होगी। इसके लिए सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। यदि कोई परियोजना कंपनी बिना नीलामी प्रक्रिया के नदी से रेत बजरी निकालती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा में भी नदियों से निकलने वाली खनन सामग्री और उसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे को सब्सिडी और कंक्रीट निर्माण से बचने के लिए कैंपिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने के साथ लोगों को प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने शिमला और सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को और प्रभावी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालयों के पास जमीन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यदि पौधे बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं तो व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।
नशे की समस्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि नशे में संलिप्त लोगों की संख्या कुल आबादी का एक हिस्सा है, जबकि बड़ी आबादी को नशे से बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान बताया कि प्रदेश में विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पात्र बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना के लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर ज्वाइंट फंड के साथ बैठक के दौरान कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन एरियर का 30%, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारियों को उनके पेंशन एरियर का 15% भुगतान अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है और उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। वहीं अधिसूचना के अनुसार पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रिया के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल का अलर्ट है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इन 3 दिनों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस बार बैंक ग्राहकों की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि 26 सितंबर शनिवार और 27 सितंबर रविवार को भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के कारण लगातार 5 दिनों तक बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की प्रत्यक्ष मदद वाले कार्य इन माध्यमों से नहीं हो पाएंगे। यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, पेंशन से जुड़े मुद्दे, महंगाई भत्ते में समानता और नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल हैं। गगल एयरपोर्ट के विस्तार में मांझी खड्ड के पानी को नियंत्रित करने के लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया गया है। योजना के तहत बरसात के दौरान खड्ड में आने वाले अनियंत्रित जल प्रवाह को रोकने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएगी। मांझी खड्ड से लेकर इच्छी तक एक यू शेप चैनल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट क्षेत्र को बाढ़ और जल भराव के खतरे से बचाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत रनवे की ऊंचाई को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के बजाय जल प्रवाह को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए भी ये परियोजना उपयोगी बताई गई है। मांझी खड्ड में पानी का दबाव कम होने से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। परियोजना के तहत डायवर्जन प्लान को केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ उठिए, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे पता।
8: कुछ मीठा बोलो।
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक खाओ कर गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: पसंद।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ इसे अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे पर...
8: कुछ मीठा बोलो।
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

0: मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने कभी मुझसे बेपनाह प्यार किया है वो इतना पत्थर दिल भी हो सकता है।
1: जरा सोचो, इसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं, तुम भी हो। तुम भी,
0: तुम नहीं जानते कि तुम मुझे कितना दर्द दे रहे हो। ये दर्दी मोहब्बत, ये जुदाई, हाय मुझे मौत दे।
1: मैं तो जीते जी मर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं।
0: मैं किसी और मसीहा का

स्टेशन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना।